नमस्कार, एफएम बैंड 102.4 7 मेगाहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 10 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 30 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 हो रहे ने। साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने।

और इसी सदिया से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम दुनदा प्रसारण समा एफएम बहन एक से दूसरिया सात मेगाहर्ट से 6:05 हो रहे ने वेला हो रहा भक्ति रस के नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना नु सरवन करन दा। आओ प्रोग्राम वंदना दे सफर दा आगाज करने मूल मंत्र दे नाल।

दिन दे सफर दी शुरुआत परमात्मा दे नाम जप और सिमरन दे नाल कीती जाए तो सारा दा सारा दिन बहुत ही चंगा ते सोहना निकलता है।

जो हर स्थिति में हरि की कृपा देखे, जो हर स्थिति में हरि की कृपा देखे, भला उसे हरि फिर कैसे ना देखे।

खिलौने भी उसी के हैं, खिलौने भी उसी के हैं, चाबी भी उसी के पास है, जिसको चाहे उसको नचाए, सब उसके ही हाथ है, सब उसके ही हाथ है।

मेरे साहिब, रिझाते रिझाते जीवन बीता, रिझाते रिझाते जीवन बीता, रीझे ना तुम शाम, एक पल में रीझ गए जब मुख से निकला श्री राधा जी का नाम।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते हुणे तुसीं सर्वन कर रहे सी भगती रस दे नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी रेनबो दा जलंधर चैनल। 7 बज रहे ने और वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस दा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश दीआं सरहदां नूं सुरक्षित करन अते गैर कानूनी प्रवासां नूं रोकना देश दी जनसंख्या दी राखी लई महत्वपूर्ण है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानां नूं बीजां दी उपलब्धता यकीनी बनाउण दे लई 1,74,000 क्विंटल दा राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित कीता गया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले विच हुईयां खामियां दी जिम्मेवारी तय कीती जानी चाहिदी है।

जी ट्यून करी बैठे हो, फिर फ्रीक्वेंसी केड़ी आ रहे 102.7 मेगाहर्ट्ज़। दिल से दिल तक दा कनेक्शन, बिल्कुल जी बिल्कुल। इस कनेक्शन नु होर भी स्ट्रांग करने वास्ते निशा बिल्कुल तैयार है तुहाडे सारे दे नाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। अरे वाह, आज से सैर करके आए लग रहे हैं। हाँ हाँ, आज मौसम जो थोड़ा ठंडा ठंडा जाए ना, बिल्कुल मैं ही आ रही सी, ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रही सी और ताजगी नु महसूस कर दिया होया, दिल बड़ा खुश हो रहा सी। शर्मा जी आ गए हो सैर करके, ते लो फिर फड़ ली आज दी अखबार आने है। चलो कोई गल नहीं, थोड़ी सैर करके आई हूँ, बैठ जाओ, ब्रेक ले लो माड़ी जी। हाँ हाँ, बस आज की ताज़ा खबर वैसे तो मैं दस ही देती है। लो जी, आज है 3 मई, यानी कि दिन है शनिवार और शनिवार वीकेंड ये मस्ती चुस्ती करोगी अपनी दोस्त निशा दे नाल। अरे वाह, आज एक चीज देख के ना बड़ा अच्छा लगा कि तुसी सारे ने ना अपने हाथ दे विच की फड़िया होया। हा हा हा हा, ताजे ताजे फुल नहीं फड़े हुए, दूध के गिलास फड़े हुए ने, यानी कि सवेरे सवेरे

सैट, एकदम ये चीज़ आनी है ना दिमाग दे विच। पर गोवा सिर्फ कोई मंदी जगह ही नहीं है, पर इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल जी, इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कई साल तक गोवा उत्ते ना पुर्तगालियां दा राज रहा सी, पर 1961 विच गोवा भारत दा हिस्सा बनिया। गोवा दी संस्कृति, खाना, संगीत ते लोकां दी जिंदगी दा अंदाज जिहड़ा है बहुत ही खास है। अते सच दसा, सच्ची दसा, सच दस देवां, मुची दस दा कई लोगों लिए गोवा सिर्फ एक जगह नहीं है, एक मूड भी है। बिल्कुल जी, दिल किता बैग चुकिया ते कह दिता चलो गोवा चले। तो फिर असी भी चलिए गोवा, चलिए। तो दोस्तों, आज दे इस खास दिन नूं असी बहुत ही एक आही सुनेहा देना चाहवांगी, आही गल कहना चाहवांगी कि हिंदी पत्रकारिता दिवस सानूं दसदा है कि सच्ची जानकारी, जिम्मेवारी अते कलम दी ताकत किन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदी है। और गोवा राज दिवस सानूं याद ये दिलाउंदा है कि संस्कृति, इतिहास अते एकता साडी सब तो वड्डी पछाण है। ते यही पछाण सानू होर भी ज़्यादा अगे वधन दे लई लेके जांदी है। ते फिर प्रोग्राम दे विच मैं भी अगे वधा, लो मैं भी अगे वधिया, मैं कैसे थोड़ा मस्ती वाला गाना हो जवे, ते फिर हो जवे फिर।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: सुनो, की तुसी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तोड़ा कर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो PMsuryaghar.gov.in ते।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सर तुसी पर्सनल लोन ले
5: फिर तो यार इनू तो ब्लॉक ही कर देना।
4: सर दुबई दी फ्री ट्रिप।
5: इनू भी ब्लॉक। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈ DND ਐਪ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਸਪੈਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਈ DND ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हाँ जी हाँ जी, 7:36 और पूरे 11:12:13:14 जो हो रहे ने समा था अपनी रफ्तार के नाल चली जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी रफ्तार, अरे थोड़ी रफ्तार भी मैनू पता है, थोड़ी रफ्तार भी इस ना ब्रेकफास्ट कर रही होएगी या फिर बैग पैक कर रही होएगी जान दे लई, सही क्या ना, या फिर तुसी अगर अपनी शॉप ते चले हो तो उदी तैयारी कर रहे हो, सही पकड़े हो। ओके सो देखो जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की बोतल जी अपने नाल जरूर कैरी करके रखा करो, एक तो पानी की बोतल जरूर रखा करो और दूसरी एक बोतल जी है वह भी जरूर रखा करो, और उस दूसरी बोतल के ना कद नींबू पानी बना के लै गए, कभी आम पन्ना बना के लै गए, और बना के लै गए मतलब प्री प्रपरेशन जी है ना चीज़ा की हो जाती है। अजकल तो बहुत सारी यहोजियाँ चीज़ा ने, यहोजे तरीके ने, चीज़ा नहीं कहोंगी, यहोजे वेज ने जिदे सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने तुम एक ड्राई मटीरियल तरह बना के रख सकते हो। नींबू पानी की गल करिए, नींबू पानी होंगे कि सवेरे सवेरे कौन उठे, कौन चीनी की चाशनी बनावे, तो कौन विच नमक पावे, काली मिर्च पावे, है ना, नींबू भी नचोड़ने पैने ने, यह प्रोसैस जोड़ा है ना थोड़ा लंबा लगन लग जाता सवेरे सवेरे, क्योंकि हर किसी के काम की अपनी एक रफ्तार होंगी है ना। नींबू बना पानी वैसे तो हर कोई बना ही लेंदा, सौखा भी होंगे, लेकिन जिन्होंने सवेरे सवेरे बहुत जल्दी होंगी है और नींबू पानी लैके जाना भी जरूरी हो जाता है, तो वो चिक चिक चिक चिक ना होवे घरदिया दे नाल, इसलिए एक छोटा जा मैथड जिहड़ा है मैं जरूर शेयर कर लैनी हाँ। मैथड इदा है कि तुसी अद्धा किलो जां किलो नींबू जिहड़े आ वो कट्ठे लैके आ जाओ, है ना, और उन्हां नींबूआं नूं तुसी नचोड़ लैना, ठीक है, एक बाउल दे विच एक बर्तन दे विच उन्हें सारे नींबू तुसी जिहड़े आ ना इकट्ठे नचोड़ लैने आ, और नचोड़दे नचोड़दे अगर उहदे बीज जिहड़े आ विच आ गए ने ते उहनूं तुसी पुण लो, है ना, ताकि बीज जिहड़े आ तुहाडे मूँह दे विच ना आण। और नींबू नचोड़न तो बाद तुसी की करना है कि चाशनी जिहड़ी है बना के रख लैनी है किलो, जिन्ना कि तुसी मिठास जिहड़ी है उस नींबू पानी दे विच घोलना चाहुंदे हो या पीना चाहुंदे हो, चाशनी जिहड़ी है वह बना लैनी है, चाशनी बनाने तो बाद वो चाशनी जिहड़ी है तुसी नींबू दे जिहड़े निचोड़े हुए रस है उहदे विच जिहड़ी है पोर कर देनी है, उहदे नाल उहनूं मिक्स कर लेना। हुण तुसी काला नमक और सफेद नमक जिहड़ा उहदे विच पा देना है, उहदे विच पाउण तो बाद जेकर तुसी काली मिर्च का हल्का जिहा फ्लेवर विच लेना चाहुंदे हो तो तुसी उहनूं भी ऐड कर सकते हो। हुण इह चाशनी बन गई है ना, और विच असी खंड भी जिहड़ी है वो चाशनी बना के पा दित्ती है, और नींबू का रस भी जिहड़ा मिक्स कर लिया, काला नमक, नमक सफेद और मिर्च, अगर सेंधा नमक यूज़ कर रहे हो कुछ भी जो भी तुसी ऐड करना चाहते हो सारिया चीज़ें तुसी ऐड कर लिया, ऐड करने तो बाद इन्हें थोड़ा जहा सुकण दो, ठीक है, यानी कि इन्हें थोड़ी देर पिया रहने दो। हुण इह किद्दां दा हो जाएगा, एक तरह ना हार्ड जहा बन जाएगा, और ये जिहड़ा हार्ड बनया होया पार्ट है ना तुसी इहनूं की करना, इहनूं थोड़ा जहा हल्का हल्का अपनी चक्कू छुरियां दे नाल थोड़ा जहा बर्तन तो अलग कर लो, बर्तन तो अलग करने तो बाद मिक्सी या ग्राइंडर इन पा के इनू पीस लो, और पीस के पाउडर जोड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, यानी कि नींबू भी हूँ नचोड़ना नहीं पेगा, खंड भी घोलनी नहीं पेगी, और ना ही तो फिर नमक काली मिर्च का जोड़ा एक फ्लेवर है उस वे ऐड करना पेगा। सवेरे उठे 2 चम्मच वो पाउडर पाया, और पानी ठंडा या जमें जो पानी तो पीना चाहते हो वह पाया, तो नाल ही नींबू पानी रेडी है। देखा ना सौखा तरीका ना नींबू पानी नाल लेके जांदा, फटाफट तो मैं दस दिता, और मैंने पता है कि सारिया जड़ियाँ भैन है उन्होंने समझ आ गया होएगा, और बाकी भरा जी कुकिंग के शौकीन ने, कुक करना पसंद करते हैं, खाना पीना बनाना पसंद करते हैं, उन्होंने भी समझ आ गया होएगा कि हमें फटाफट बन जाएगा। पैकेट वाला नींबू पानी लैके आने तो बेहतर है कि घर दे विच तुसी इनू बनाओ, और हेल्दी भी होएगा और नाल दे नाल फटाफट बनया होया होएगा, कोई चिक चिक ची ची पी पी नहीं होएगी। कई बार हुंदा ना इदा कि जग मम्मा लै लैंदे ने, और मम्मी जो तो जग लैंदी है तो उहदे विच खंड सारे चीज़ां पा के कहोगे लै काके घोल इनू, और बेटा ठा ठा मारेगा, जिदा घोलन का मन नहीं ना हुंदा घोलन का, वह फिर ठा ठा मारदा हुंदा। सो ये बैटर ऑप्शन है जिहड़ा कि मैं तुहानूं दस दित्ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैकेट वाला जिहड़ा असीं नींबू पानी लैके पीने वह हैल्दी हुंदा, पता नहीं किहो जिहे नींबू जिहड़े उहदे विच वरते जांदे होणगे, है ना। सो इट्स बैटर कि तुसीं घर दे विच ही रह के अपने इस नींबू पानी नूं बना लो और हेल्दी वेल्दी रहो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित

आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर केंद्र है। हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से। घड़ी की सूई के मुताबिक 8:30 हो जा रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद तुसी साडे प्रदेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।

FM बैंड 102.7 MHz से 8 बज के पूरे दे पूरे 43 मिनट जड़े है होन जा रहे ने और वेला हो गया जी प्रोग्राम बैक टू बैक पंजाबी गीत संगीत नु सुनन दा अड्डी टप्पा ते आओ फिर थिरकन दे ये फिर थोड़ी अड्डी भी ते पालो थोड़े जे टप्पे भी

FM 102 शरिया सदमे का हर से हुने तुसी सुनने सी प्रोग्राम अड्डी टप्पा नवा रेने वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस आ सरकार ने पछमी एशिया विच टकराव कारण आलमी ऊर्जा सप्लाई विच विघन दे मद्देनजर जनतक खेतरां दी तेल मार्केटिंग कंपनियां नूं 30 दिनां दे LPG भंडारां नूं सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते ने। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय दे राष्ट्रीय परिवारक सेहत सर्वेखण दे 6वें दौर दे आंकड़े जारी कीते गए ने। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नवीं सुरक्षा चुनौतियों नाल नजिठण विच सीमा सुरक्षा बल नूं होर प्रभावशाली बनाउण दे लई इस नूं वाधू जिम्मेवारियां सौंपण दे विचार कर रही है। पंजाब दियां 102 स्थानक इलाकियां इकाइयां लई होईयां चोणां च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 1977 वार्डां विचों 958 ते वड्डी जित दर्ज कीती है। वित्तीय सेवावां विभाग ने लावारिस स्थितियां संपत्तियां लई संपत्तियां नाल संबंधित जानकारी लोकां तक पहुंचाउण दी सहूलत लई कॉमन लैंडिंग पोर्टल जारी कीता है। मौसम विभाग वालों आज लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों विच गरज चमक नाल गड़ेमारी बारे रेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज ब्रिस्टल विच शाम 7 बजे खेडिया जाएगा। हांगकांग विच चल रही एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप विच भारतीय एथलीटा ने शानदार प्रदर्शन करदियां 4 सोने दे तमगियां समेत 8 तमगे जीते ने। अते IPL क्रिकेट च गुजरात टाइटन्स दे राजस्थान रॉयल्स नूं 7 विकटां नाल हरा के फाइनल विच जगह बना लई है।

जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने पता है तुसी डायल भी कर रहे होंगे है ना, और मैसेज करन वास्ते उतावले भी होंगे कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो प्रोग्राम दे विच साडा मैसेज जिहड़ा है पहुंच जावे फटाफट, और पहला मैसेज मेरा ही पहुंच जावे। लो जी निशा बिल्कुल एक बार फिर तो थोड़े दिलों के उत्ते राज करन वास्ते आ गई वापस, दिल अपना पंजाबी थोड़ा सारा का फेवरेट वाला शो लैके। बिल्कुल 9:04:33-34:35 जिहड़े है हो गए ने, और वेला है किस चीज़ का, अरे वेला है दिल अपना पंजाबी दे विच थोड़ी खूबसूरत मैसेजेस नू पढ़न दा ते थोड़ा कलण दा। बिल्कुल जी, जेकर तुसी चाहुंदे हो कि थोड़े मैसेजेस जिहड़े है प्रोग्राम दे विच शामिल किए जाण ते तुसी मैसेजेस करने ने 9855101027 दे उत्ते। वल अज असीं मना रहे हाँ इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, यानी कि विश्व आलू दिवस जिहड़ा है वह असीं मना रहे हाँ। भाई आलू की कोई रेसिपी आउंदी बनाउणी, आलू की कौन रेसिपी है जिहड़ी तुसीं नहीं बना सकते, बना सकते हैं भाई आलू नू की है, उबाल लो, कच्चा रख लो, किसी भी तरह उन्हें चाहे तुसीं कद्दूकस कर लो, कुछ ना कुछ तो वह बन ही जाता है ना। रसोई दे विच जे कुछ खाने ना मिले तो फिर आलू जिंदाबाद, VIP जो होया। समोसे में रहेगा आलू, और टिक्की में रहेगा आलू, और परांठे में रहेगा आलू। जय हो आलू जी। बिल्कुल जी, आलू की कहानी जिहड़ी है जेकर तुसी मेरे नाल प्रोग्राम तो साझा करना चाहते हो तो कर सकते हो, निशा बिल्कुल थोड़ी आलू की कहानी सुनेगी। 103.6 MHz ऑन न्यूज़ ऑन एयर ऐप के उत्ते जुड़े सारे दोस्त साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, वो भी प्रोग्राम के मैसेजेस जिहड़े है कर सकते हैं। वैसे गल करिए ना, ये जिदा कोई कहते हैं ना, जो कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई शो ऑफ करन की आदत नहीं है, पर फिर भी रसोई का VIP है, वह है जी साडा गोलू मोलू आलू। हाँ गोलू मोलू। अच्छा जरा सोचो, एक चीज़ सोच के देखो है ना, जे सब्जियां दी दुनिया दे विच ना कोई अवार्ड फंक्शन होवे तो उत्थे टमाटर आके कवे मैं ता जी मैं ता लाल आ लाल, अरे वाह, ते गोभी आके कवे मैं ता हेल्दी वेल्दी हाँ, अरे अरे, और आलू आ जाए फटाफट स्टेज तो सारिया सब्जियां खड़गियां हो गए कहन भाजी तुसी ता हर थाई फिट हो ते हिट हो जी। क्यों? क्योंकि पराठे विच आलू, समोसे विच आलू, टिक्की विच आलू, चिप्स में चालू, घर जदों भी कोई सब्जी ना बने ना, मम्मी एक डायलॉग मार दी, चलो जी आज फिर आलू ही बना लेने हैं। फिर भाई आलू वो दोस्त है जो हर था हर किसी के नाल एडजस्ट हो जाता है, मटर मिले तो आलू मटर, गोभी मिले तो आलू गोभी, पालक मिले तो आलू पालक, जे कुछ भी ना मिले ना तो सुके आलू ही सुपर हिट है मम्मी की रसोई च। एक्चुअली ना जो असं देखिए ना असल में आलू

उड जावे लालच मोह प्यासे दा चमड़ा वेख के गुरु गोरख उंगली नक नपदाए रविदास ता उस सच्चे रब दा ना जपदाए रविदास ता उस सच्चे रब दा ना जपदाए गोरख करदा टाला बन ला के पानी दा रविदास जी कहिंदे अमृत छक लो बारी दा ले जाओ कबीरा ए दाता जाति मन तपदाए रविदास ता उस सच्चे रब दा ना जपदाए रविदास ता उस सच्चे रब दा ना जपदाए चौवे गल्ला कर दे ऊंचिया बिच डेरे दे गोरख चिप्पी छड गया बजे चार सवेरे

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: फिर पकड़ लई बा।
1: बल्ले बल्ले क्या ही बातें ने। मैं क्या दोस्तों तुम छाए हुए हो सारे जने प्रोग्राम के थोड़े मैसेजेस ने प्रोग्राम च रौनक लगाइया हुई ने। प्रोग्राम चल रहा है दिल अपना पंजाबी और पंजाबियों का दिल कह रहा है कि पुराने पुराने गीत संगीत के नाल नाल साडियां गल्लां होनियां चाहीदियां। लो तुहाडियां गल्लां करदे आ जी। हैलो जी, सत श्री अकाल जी। यार मैसेज आया है साडे कोल, अज मौसम जिहड़ा है ना बहुत वधिया हो गया है ते असीं तां चाह नाल पकौड़े बना रहे हैं। वैसे है ते गल सही ना, चाह ते मौसम क्या ही बातें ने, है ना। मेरी चाह कितने आ, मेरी चाह भी ले आओ। जब पकौड़े का नाम सुन के मेरे मुँह से थोड़ा जा पानी आ गया। हाए ओए रब्बा, चाह नाल पकौड़े बना रहे हो, आ जाओ तुम भी खाने। तो दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम बहुत वधिया चलता है, बहुत चंगा लगता है सुन के। एफ एम रेनबो जिंदाबाद। सतनाम सिंह गिल पिंड जोड़ा सिंह जौड़ सिंह वाला तरन तारण। अगला मैसेज जिहड़ा प्रोग्राम च आया है, पतझड़ में ही परख होती है रिश्तों की। पतझड़ में ही परख होती है रिश्तों की, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखाई देता है। ये सानू मैसेज है जी संगरूर तो किकी तिमान। आहा, सुनते हैं जी अगला मैसेज। प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी चल रहा है जी।
2: मैडम जी प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। मैं हाजिर हां दिल अपना पंजाबी यानी कि रेडियो शान पे। सुखदेव सिंह लखनपाल बस्ती शेख जनक नगर जंदर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ते मैडम जी बहुत ही वधिया तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो, तुहाडा अंदाज बहुत प्यारा ते परमात्मा तुहानू चढ़दी कला विच रखे ते लाइना लै के हाजरा मैडम जी कबूल करियो
1: जी। जरूर
2: तेरा नाम हर रात तेरी याद दा साया रह गया। सुत्ता सी सारा जहान मैं जागया रह गया। हसदा रहा मैं महफलां दे दरमियान, अखां च दिल दा दर्द वगया रह गया। तू बिना कुछ कहे ही राह बदल लिया, मेरे हिस्से सवालां दा सिलसिला रह गया। प्यार नूं असी इबादत मन बैठे सी, उहदे लई तां सिर्फ एक वादा रह गया। जिन्हां नूं अपना समझ के सीने नाल लाया, उही हर वारी दिल चीरदा रह गया। नाम लै के तेरा जिउणा जिउंदा रहा मैं। नाम लै के तेरा जिउंदा रहा मैं
1: जी।
2: सुखदेव मेरा हर सुपना तेरे नां लिखिया रह गया। मेरा हर सुपना तेरे नां लिखिया रह गया। धन्नवाद जी दिल अपना पंजाबी।
1: शुक्रिया प्रोग्राम दे विच साडा साथ निभाउण दे लई, साडे नाल जुड़न दे लई। प्रोग्राम चल रहा है दिल अपना पंजाबी। अगला मैसेज कौन लेके आया सुनने हैं जी।
3: हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
3: मैं फारूक अब जलंधर बोल रहा
1: हूं। अरे दोस्त देखो ना, तुसी मैसेज रिकॉर्ड कर दियो ना, इस चीज़ का ख्याल रखा करो कि तुहाडे आले दुआले जिहड़ी आवाज़ है ना वो इन्नी ज़्यादा ना आ रही होवे, क्योंकि इहदे नाल की हुंदा है कि तुहाडी आवाज़ की जिहड़ी एक क्वालिटी है ना वो थोड़ी घट हो जाती है, और तुहाडी आवाज़ नालों ज़्यादा उस शोर शराबे की आवाज़ जिहड़ी है सानू

0: लगने लगते हैं। जी बिल्कुल सही। और ये मैसेज साड़ी को लाया मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान, और पिंड जेड़ा है खुरजुला मलेरकोटला। तो सानू मैसेज करे ने, अगला मैसेज सुनने जी, कौन ने कितों आए ने की कह रहे ने।
1: हेलो दिल अपना पंजाबी, निशा मैडम जी वेरी गुड मॉर्निंग, दिल से दिल तक सारे दोस्तों नु प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: गुड मॉर्निंग प्यार भरी सत श्री अकाल।
1: नमस्कार मैडम जी, अज मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, गर्मी तो हल्की जी राहत मिली है मैडम जी, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है, ते नाल तुसी अज टॉपिक लिया है आलूआं दा। आलू मैडम जी रसोई दी बड़ी वधिया शान हन, रसोई विच आलू ना होन ते समझो रसोई साडी सुन्नी है।
0: बिलकुल बिलकुल।
1: ते मैडम जी आलू दे नाल आपां हर मौका संभाल सकते हैं, जिस तरह की आलू दे परौंठे बना के, आलू दे पकौड़े बना के, आलू दी बड़ी पा के सब्जी बहुत स्वाद बनती है। ते मैडम जी नाल आलू बच्चों नूं फ्रेंच फ्राई बना दो, बच्चों दे टिफिन च छोटे आलू बना दो। आलू तां रसोई दी शान है, रौनक है, ते नाल मैडम जी बच्चे भी खुश होके आलू नूं ही खांदे ने। किसी वेले छोटे हुंदिया मैं टिंडे कद्दू बनाना ते उन्होंने कहना मम्मी आलू है, आलू कह के उन्होंने टिंडे कद्दू भी खवा ही देते सीगे मैडम जी।
0: फिलहाल समा जिहड़ा मैनूं पता की कहिंदा पिया, समा मैनूं इह कह रहा है कि टाइम है एक छोटी जी ब्रेक दा, इस तों बाद इह सिलसिला इसे तरह चलदा रहेगा। दिल अपना पंजाबी आई मैं हुणी, बस जस्ट मिनट, दो मैनूं 2 मिनट में आ गई तुहाडे कोल बस।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी, उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर।
4: सर तुसी पर्सनल लोन लै,
5: फिर तो यार इनू तो ब्लॉक ही कर देना।
4: सर दुबई दी फ्री ट्रिप,
5: इनू भी ब्लॉक, किन्नियां नूं ब्लॉक करी जावां यार। सिर्फ फोन ते ब्लॉक करना स्पैम खत्म नहीं हुंदा, हर बार नवां नंबर आ जांदा है, तां फिर की करां? कॉल पिक कर, फिर ट्राई डीएनडी ऐप ते रिपोर्ट कर, कैटेगरी सिलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस ते सबमिट करो, बस कुछ सेकंड्स दा काम है। मतलब सब दा स्पैम कट जावेगा? हां, रिपोर्ट मिलदे ही एक्शन हुंदा है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तों, ते रिपोर्ट करना शुरू करो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रेनबो एफएम।

ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। भारत ते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल विच शाम 7 बजे खेडिया जाएगा। हांगकांग विच चल रही एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच भारतीय एथलीटां ने शानदार प्रदर्शन करदियां 4 सोने दे तगमे समेत 8 तगमे जीते ने। उधर आखिर आईपीएल क्रिकेट च गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स नूं 7 विकटां नाल हरा के फाइनल्स विच जगह बना ली है। ए सन हुण तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: लड़ीवार
0: नाटक होया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ थी प्रोग्राम गीत बहार। सैफ अली खान दियां बहुत सारियां फिल्मां जिहड़ियां सानूं बेहद पसंद आउंदियां ने, मतलब उन्हां दी उस दौर तों लैके हुण दे दौर तक भी जिन्नियां फिल्मां ने बहुत ही दिलचस्प होंदियां ने। उन्हां दा अपना एक स्टाइल है, एक हेयर स्टाइल, और उन्हां दियां अखां भी गल्लां करदियां ने। तो जे मैं उस दहाके की गल करा तो अक्षी एंड सैफ अली खान की फिल्म बड़ी ही फेमस हुई सी, खिलाड़ी। खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, खिलाड़ी 786। हालांकि ये सारिया फिल्मों के सैफ अली खान अक्षय कुमार होना दे नाल नहीं सीगे, लेकिन जिहड़ी फिल्म दे विच उन्हां दे नाल सीगे ओ फिल्म का गीत तुहानू कुछ पलों बाद इस रेडियो सैट पर सुनाई देगा। एंड तैनू पता है कि सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दसिया सीगा कि जिहड़ी ये फिल्म है जिहदा नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये फिल्म ना द हार्ड वे जिहड़ी कि हॉलीवुड फिल्म सीगी उहदे तों कॉपी की गई सी, मतलब उस फिल्म की प्रेरणा या प्रेरित होकर फिल्म बनाई गई सी। कई बार तुसीं नोटिस किया होना कि साउथ दियां बहुत सारिया मूवीज़ जिहड़ियां ने ना वह बिल्कुल हूबहू जिहड़ियां बॉलीवुड दियां मूवी होंदियां ने, सेम टू सेम स्टोरीज़ होंदियां ने। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਚੁਰਾ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਕਿ 90 ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार की जोड़ी इस फिल्म के बहुत ज़्यादा जड़ा पसंद किया गया, दिलों से राज किया है।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज थी, समा हो चुकी है जी एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। सरकार ने पश्चिमी एशिया विच टकराव कारण आलमी ऊर्जा सप्लाई विच विघन दे मद्देनज़र जनतक खेतर दियां तेल मार्केटिंग कंपनियां नूं 30 दिनां दे एलपीजी भंडारां नूं सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते ने। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवारिक सेहत सर्वेखण दे 6वें दौर दे अंकड़े जारी कर दित्ते ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नवीं सुरक्षा चुनौतियों नाल निपटण विच सीमा सुरक्षा बल नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई इस नूं वाधू जिम्मेवारियां सौंपण ते विचार कर रही है। पंजाब दीआं 102 स्थानक इकाइयां लई होईआं चोणां च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 1,970 वार्डां विचों 958 ते वड्डी जित दर्ज कीती है। वित्तीय सेवावां विभाग ने लवारिस वित्तीय संपत्तियां नाल संबंधित जानकारी लोगों तक पहुँचाने की सहूलत लई कॉमन लैंडिंग पोर्टल जारी कर दिता है। मौसम विभाग वालों अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच वख-वख हिस्सों विच गरज चमक दे नाल गड़ेमारी बारे ओरेंज अलर्ट जारी होया है। भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज ब्रिस्टल विच शाम 7 बजे खेडिया जाएगा। हांगकांग विच चल रही एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप विच भारतीय अथलीटां ने शानदार प्रदर्शन करदियां 4 सोने दे तगमियां समेत 8 होर तगमे जिते ने। आईपीएल क्रिकेट विच गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स नूं 7 विकटां नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। एसान हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से समा हो चुकिया जी FM न्यूज हेडलाइंस दा। सरकार ने पश्चिमी एशिया विच टकराव कारण आलमी ऊर्जा सप्लाई विच विघन दे मद्देनज़र जनतक खेतर दियां तेल मार्केटिंग कंपनियां नूं 30 दिनां दे LPG भंडारां नूं सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते ने। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवारक सेहत सर्वेखण दे 6वें दौर दे अंकड़े जारी कर दित्ते ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नवीं सुरक्षा चुनौतियों नाल नजिठण विच सीमा सुरक्षा बल नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई इस नूं वाधू जिम्मेवारियां सौंपण ते विचार चर्चा कर रही है। पंजाब दियां 102 स्थानक इकाइयां लई होईयां चोणां च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 1,977 वार्डां विचों 958 ते वड्डी जित दर्ज कीती है। वित्तीय सेवावां विभाग ने लवारिस वित्तीय संपत्तियों नाल संबंधित जानकारी लोगों तक पहुँचाने की सहूलत लई कॉमन लैंडिंग पोर्टल जारी कर दिता है। मौसम विभाग वालों अज लई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों में गरज चमक नाल गड़ेमारी बारे ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारत और इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज ब्रिस्टल विच शाम 7 बजे खेडिया जाएगा। हांगकांग विच चल रही एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप विच भारतीय अथलीटा ने शानदार प्रदर्शन करदिया 4 सोने के तबकों समेत 8 तगमे जीते ने। IPL क्रिकेट च गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स नूं 7 विकटां नाल हरा के फाइनल्स विच अपनी जगह बना ली है। ए सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

रेनबो सुनती रहती है ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ FM रेनबो लाने। मां कसम सुनते रहिए 102.7 FM रेनबो।

प्रोग्राम होम स्वीट होम। अज मैं गल करन जा रही हाँ जी, जड़ी ना कई बार अचानक ते आम जी गल नहीं होंदी पर अचानक हो जाती है, तो जो होंदी है ना वो हैपनिंग, तो वाकई डर लगता है कि पता नहीं की हो गया। और खास करके वह गर्मियों के विच ही होंदी है, और खास करके वह बच्चियां नू होंदी है। वो है जी नक दे विचों ब्लीडिंग होण लग पैना, नक दी नसीर फट जाना, बड़ा औखा होंदा है। क्योंकि जो असी छोटे सी ना तो साढ़े नाल इदा होंदा है, तो सानू पता नहीं सी लगता कि इहदे की कारण हो सकते हैं। प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच इन्हां कारणां दे बारे भी गल करांगे कि साढ़े कोल ही कोई कमियां हो जांदियां ने जिस करके नक दी नसीर जिहड़ी है वह फट जाती है, तो नक चो जिहड़ा वह ब्लीडिंग होण लग जाती है। नक दे अंदर ना बहुत ही बारीक अते नाजुक सॉफ्ट खून दियां नसां होंदियां ने, वेन्स होंदियां ने। गर्मी दे मौसम विच ना ये जड़ियां वेन्स ने साडियां ज़्यादा संवेदनशील सॉफ्ट हो जांदियां ने, कई बार ये फट जांदियां ने, जिस कारण नक दे विचों ना खून आउण लग जांदा है, जिसनूं ब्लीडिंग कहिंदे आ, ब्लीडिंग जिहड़ी है होण लग जांदी है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
2: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
1: ते बिजली दे बिल दे
2: हुण 0 रुपए किवें दवा।
1: ओहो भुली गई सी, हुण ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
2: जरूर PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: वेल दोस्तों, अज तां जी वर्ल्ड पोटैटो डे है, यानी कि 30 मई अज दा दिन, और अज दे दिन ही ना मतलब आलू नूं मान्यता प्राप्त हुई सीगी। मतलब जिन्हां नूं आलू खाना पसंद ने, आलू दे परौंठे पसंद ने, आलू वाले पकौड़े पसंद ने, आलू दी सब्जी पसंद है, आलू किसी भी रूप दे विच खाना पसंद है, उन्हां लई ते अज बड़ा वड्डा दिन है। वर्ल्ड पोटैटो डे हर साल 30 मई नूं मनाया जाता है। इस दा मकसद आलू दी अहमियत नूं ना उजागर करना है, क्योंकि आलू दुनिया दी ना सब तो महत्वपूर्ण फसलां विचों एक मन्या जाता है। आलू दा मूल जड़ा सीगा वो साउथ अमेरिका तो मन्या जाता है। दुनिया विच 4,000 तो भी वध आलू दियां किस्मां मिलदियां ने। की तुहानूं पता सी पहले? मैनूं पता है कि तुहानूं बिल्कुल नहीं सी पता, लेकिन अज तुहानूं प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच इह जानकारी जरूर होएगी, और ये तुसी याद भी रखना है जेकर कल नूं तुहानूं कुछ पुछ लवे कि आलू बारे। सो जी, आलू दे विच विटामिन सी एंड पोटाशियम अते फाइबर दा चंगा स्रोत हुंदा है, जो कि साडी हैल्थ वास्ते काफ़ी वधिया हुंदा है। ये लखां किसानां दी रोज़ी रोटी दा भी जरिया है। बिल्कुल जी, तुहानूं पता है कि किन्ने सारियां शॉप्स ने, किन्ने सारे ढाबे ने जिहड़े कि अर्ली मॉर्निंग सानूं आलू वाला परांठा बना के दे दिंदे ने। जदों कितें असीं ट्रैवल करदे होईए ते असीं दूर दुराडे किते जाणा होवे ते घरों असीं अपनी पैक मतलब ब्रेकफास्ट या लंच या ब्रंच कुछ भी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से

0: निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी 12:54 ते 37 सैकेंड हो चुके हैं, यानी कि प्रोग्राम होम स्वीट होम का वाइंड अप करने का समा जड़ा है ना, वो लागे लागे आई जा रहा है। तो मैं इनू वाइंड अप करन जा रही हाँ, क्योंकि जी 1 बजे इस तो बाद अगला प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गीतों का सफ़र भी शुरू करना 1 से 2 बजे तक। सो जी तुम बने रहो जी 102.7 MHz नाल, ते मैं हाँ तुहाडी प्यारी आरजे दोस्त रणदीप कौर। प्रोग्राम का आखिरी गीत अखिल की आवाज़ दे, जदों जिंदगी तजर्बियां ते बहुत सारी चीज़ों की गल आती है, तो फिर ये वाला गीत किदा पिछे रह जाए।

वेलकम बैक 102.7 एफएम डी प्रोग्राम शुरू हो चुके आज मिड डे मेलोडीज। वाओ सच्ची कितना सोहना समा होंदा है ना, और जदों एक बजता है तो एक बजे तो दो बजे तक बाकी हिंदी गीतों का सफ़र। वैसे तो हर बड़े सारे प्रोग्राम ने पर जिहड़ा आ वाला टाइम होंदा ना वाकई सुकून दिल नूं अते रूह नूं सुकून मिल जाती है। सो जी अज रणदीप खौड़े थोड़े नाल दी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। हाय हाय क्या बात है, उत्तों मौसम इन्ना सोहना, तो इधरों जी प्रोग्राम का गीत उस तो भी सोहना, बहुत सोहना।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: कर, कैटेगरी सिलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस ते सबमिट करो, बस कुछ सेकंड्स का काम है।
1: मतलब सब दा स्पैम कट जाएगा?
0: हाँ, रिपोर्ट मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तो, ते रिपोर्ट करना शुरू करो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

क्या सोनी लाइन है दोस्तों कि हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। एक गल ना वैसे ना प्यार से कितनी जा सकती है, जेकर तुसी प्यार करते हो किसी नु, मोहब्बत करते हो ना, डूंगी मोहब्बत करते हो ना, कहना मतलब ये ना गल्ला ना फिर उदो ही जज्बात ना उदो ही निकलते होंगे ने। वैल सरोतिया असी फरमाइश की सी, तो सरोतिया ने साड़ी ना जिहड़े प्रेजेंट लवा दी है जिवें आपां कहा सी ना। तो स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला साढ़े पहले स्रोते लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी लिख रहे हैं कि दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी। हिंदी पंजाबी मिक्स है, वाह ओके। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी। होगी उदास ना होई कदे, होगी उदास ना होई कदे, बात भी होगी। इन्ने प्यार नाल चुनिया तेनू, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। क्या बात है जी, काश अज ऑडियंस बैठी होंगी तो जी तुसी अपनी शायरी लिखी ना, तो लोग ऑडियंस ने ना ताड़ियां मारन लग गई।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उसदे घर वाले कुड़कुड़दास बुलाउंदे सन, क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही उह सारयां ते चिकन लगदे सन।
2: ओ रामू, ए पखा क्यों चलदा छड्डता? बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
1: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने, क्योंकि जदों तो उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तो मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अज ही रजिस्टर करो।

हाँ जी हाँ जी दोस्तों, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, तो ही सुन रहे एफएम बैंड 102.7। हुणी तुसीं सुनिया गाना रूहांवाला गीत बाय सतिंदर सरताज। दोस्तों वेल दोस्तों, साढ़े स्रोते ने बहुत सारे मैसेजेस किए ने, तो एक एक करके उन्होंने पढ़ते हैं। दोस्तों सब तो पहला साढ़े कोल है पाली प्याला हुशियारपुर तो, लिख रहे ने इबादत, तो लिख रहे ने कि हुण कंडिया वर्गे तिखे बोल लिखणी हुंदे, बस फुल्लां वांगू बगीचियां विच इश्क पर रहा। हुण कंडिया वर्गे तिखे बोल लिखणी हुंदे, बस फुल्लां वांगू बगीचियां विच इश्क पर रहा, जदों दा तैनूं वेख्या मैं बस तेरी ही इबादत कर रहा। क्या बात है जी। आई होप जी अगर तुसीं ये लाइन अपने ना एक अपनी महबूब नू या अपने कहते ना एक जिन्हों तुसी प्यार करते हो सामने बोलोगे ना, तो क्या वो शर्मा जूगी, तो मैं क्या जी गल ही कुछ होर हो जूगी। उस तो बाद साढ़े कोल होर भी स्रोते ने, साढ़े स्रोते ज़्यादातर फोटोस भेजना ही प्रैफर करते हैं, पर एक गल यह है कि दोस्तों जरूर किसी की कलम नू मैनशन करो, क्योंकि होंगी ना गलबात फिर उदो ही पता लगता कि यह किन्ने लिखा है। उस तो बाद आपां इन्हां दा पढ़दे हाँ। यह है मुहम्मद मुसफ्फर लिख रहे ने कि जब दूर हो, तो इन्हां दे टाइटल दा नाम है जब दूर हो। जब तू दूर होती है तो हर चीज़ अधूरी सी लगती है, ये दिल हंसता है तो पर अंदर कहीं चुपचाप रोता रहता है। तेरी यादें रात भर तकिए के पास बैठी रहती है और तेरी कमी हर सांस में महसूस होती है। कभी अचानक दिल बेचैन हो उठता है और बिना वजह आंखें नम हो जाती है, शायद इसलिए कि तेरा दर्द और मेरा दर्द बन चुका है। दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, मोहब्बत में नहीं। क्योंकि जब एक दिल सच में जुड़ जाए तो दूसरे दिल की खामोशी भी सुनाई देती है, और फिर तू चाहे कितनी भी दूर हो तेरा एहसास हमेशा मेरे पास ही रहता है। देखो जी बहुत ही कहते ना अपना रियल स्टोरी कहते ना, यह रियल सच्चाई है दोस्तों जो इन्होंने लिखा, बहुत सोहना लिखा जी। उस तो बाद साढ़े होर स्रोते जी, सर जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, रसोई में आलू हमारा आकाशवाणी जलंधर रहेगा हमेशा, चालू आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। थैंक यू। हाँ जी आज है आलू दिवस। देखो जी आलू तो याद आ गया जी, आलू ना हर बंदे ने टेस्ट किया होता, कोई कभी नहीं

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दला शायर है। ते दोस्तों एक ना साडे है एक गुरप्रीत नाम दे एक लेखक ने उन्हां दी एक छोटी जी कहानी है कि गुरप्रीत रोज़ डाकिया काला सिंह कोल पुछदा हुंदा सी कि काला चाचा जसमीन दी चिट्ठी आई है। काला सिंह हस के कहिंदा हुंदा सी कि पुत जसमीन तां 5 साल पहले कैनेडा चली गई। पर गुरप्रीत फिर भी हर शाम एक खाली लिफाफा लिखता उत्थे जसमीन लंदन लेके डाक पेटी विच पा देंदा सी। साला बाद काला सिंह रिटायर होया उसने गुरप्रीत नू सारे लिफाफे वापस मोड़े कहा मैं कदे भेजे ही नहीं सी। गुरप्रीत ने लिफाफे सीने ला के कहा नाम तेरा लिख के खुश सी गुरप्रीत पत्र पहुंचे ना पहुंचे की फर्क पैंदा है तेरे नाम दी सियाही ही मेरा इश्क सी जसमीन ते इश्क कदे अधूरा नहीं हुंदा। क्या बात है दोस्तों एवें साडे ना जिहड़े साडे फेमस राइटर ने जिवें कि शिव कुमार बटालवी जी उन्होंने भी एक टाइम लिखा सी कि पंजाब दा शैले कहिंदे हन उन्हां दी कविता लूणा पंजाबी साहित्य की सब तो मशहूर कहानी काव्य है कि दर्द इश्क विछोड़े नूं अजिहे लिखिया कि पढ़ के रूह कंब जांदी है मैनू भी चाण वालो मेरे वर्गा हो जाओ। क्या बात है जी। उस तो बाद साढ़े अमृता प्रीतम जी जो फेमस राइटर से उन्होंने भी कहते ना कि पहले ही तो इकलौती पंजाबी औरत जिसनों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया सी सुनेहे उन्होंने कविता कहते ने सुनेहे कविता विच वारिस शाह नूं पुकार के वंड दा दर्द लिखिया सी। अज लिखिया सी उन्होंने कि अज आखां वारिस शाह नूं कित्थों कबरां बोले नावल कविता आत्मकथा हर विदा विच माहर। उतवा साडे गुरदयाल सिंह जी ने भी उन्हां दी अनहोई जिन्हें मरही दा दीवा वर्गे नावला लई ज्ञानपीठ जेतू उन्होंने जितया सी कि पेंडू जिंदगी किसान दे दुख सुख नूं यथार्थ नाल लिखिया। उन्हां दी भाषा मिट्टी दी खुशबू दिंदी सी दोस्तों कि तुसीं किस तरह दे लेखक हां ते जिवें कि कहिंदे ने उन्हां दी जिहड़ी लाइटिंग च ना मिट्टी दी खुशबू झलकदी हुंदी सी दोस्तों। सो दोस्तो प्रोग्राम चल रहा दिला चायर है ते साडे होर स्रोतियां दे मैसेज आ रहे ने लिख रहे ने कि गलतियां सियाने भी करदे हन पर ओह गलतियां दोहराउंदे नहीं

एक तू ही धनवान है गौरी, बाकी है सब कंगाल। दोस्तों बस कुछ ही मिनट दा, बस कुछ मिनट रह गए ने साडे प्रोग्राम दे लास्ट शायर नू खत्म होने लई। ते उस तो पहला साडे आखिरी स्रोते सानू लिख रहे ने कि सत श्री अकाल भाजी, नाम दिनेश कुमार, पिंड दयालपुर जिला जलंधर। लिख रहे ने कि भाजी तुहाडा प्रोग्राम बड़ा वधिया लगता है, सुकून बड़ा मिलता है, तुसी गल्लां बड़ियां कैंट करते हो जी, एक शायरी पेश है जी। क्या बात है जी, जरूर पेश करो जी। दिनेश जी, सबरां दे महल भी एक दिन ढह जांदे ने, सबरां दे महल भी एक दिन ढह जांदे ने। कहिंदे ने कि जो सब दा सोचदे ने ओही अक्सर इकल्ले रह जांदे ने। हाय हाय हाय हाय, ए दिनेश जी यार ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਵੈਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ

दोस्तों सांझ वड़ी ते रिश्ता पुराना तू मन जाना मन ही रे। दोस्तों एसी अज दा प्रोग्राम द लास्ट शायर है। आई होप थानू बहुत मजा आया होगा ते मैनू बहुत मजा आया थोड़ी शायरीज पढ़ के। बहुत सोना लिखते हो सारे साडे सारे सरोते। आई होप आपा फिर इस चीज़ नू कंटिन्यू करोंगे। वैल वेला हो चुका है हुन ते हुन तुसी सुनोगे 3 तो 4 प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर जो कि दिल्ली तो प्रसारण होगा ते 4 तो 5 सुनोगे तुसी हैलो जलंधर शो विद आरजे रमनीश। बहुत मज़ा आएगा, बहुत खा पावांगे दोस्तों। बस याद रहियो 4 बजे तो पहला ही फोन चक लियो तो लैक डायल कर दियो तो आप मिलोंगे उदो दोस्तों।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आपके साथ है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपकी ख्याल

0: आपकी वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आपके साथ है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपकी ख्याल रखता है, आपके लिए रोज आता है नए नए कार्यक्रम लेकर स्वास्थ्य की नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही एक कार्यक्रम आज आपके समक्ष। फिर कार्यक्रम का समय वही है 3 से 4, और चैनल भी वही, आपका प्यारा एफएम रेनबो 102.6। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर को। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर। आज का हमारा विषय बहुत खास, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, यानी MS डे। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, कई हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना और समाज में इसके बारे में जानना, क्योंकि अगर कोई इससे पीड़ित है तो उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, उससे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, उसको सोशली कैसे इंक्लूड करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट जो कि हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप सबकी भागीदारी। अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ पूछना चाहते हैं, इस विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं झिझकना है, जुड़ना है रेडियो डॉक्टर के साथ। और आज का जो ये विषय है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास धिकव। आप हैं क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। पहले डॉक्टर विकास धिकव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को चूज किया है, शुक्रिया। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी अवेयरनेस जनरेट होगी इस दुर्लभ बीमारी के बारे में।
1: जी बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरे हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। डॉक्टर आशु, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: नमस्कार मैम।
1: और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है, और हमारे श्रोता भी स्वागत करेंगे जब हमसे प्रश्न करेंगे। और प्रश्न हम चाहते हैं आप MS से संबंधित करें। और हमारे साथ दोनों जो एक्सपर्ट हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सबसे पहला प्रश्न मैं ही ले लेती हूँ, मुझे मौका मिल गया डॉक्टर साहब। ये बताइए, पहले हम समझ लेते हैं कि MS क्या है, फिर हमारे श्रोता और हमारे से प्रश्न करेंगे।
2: जी देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक किस्म की दुर्लभ बीमारी है। और दुर्लभ हम बोलें तो 20 से 40 लोग लगभग 1,00,000 पॉपुलेशन में से इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे चलती है, कभी कभी सडन इसके एपिसोड्स भी होते हैं। ऑटो इम्यून, जैसे आपने बोला, ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, नॉर्मली कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसके ऊपर हमारे एंटीबॉडीज अटैक करते हैं। लेकिन इस बीमारी में हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल अंग हैं, उनके ऊपर ही हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक किस्म से हमारी जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे एंटीबॉडीज का अटैक होता है। तो उससे क्या है कि जो हमारा माइलिन है, माइलिन यानी कि जो जैसे बिजली के तार होते हैं, तो तार के ऊपर एक लेयर होती है, तो वो जो लेयर इंसुलेशन है तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उससे क्या है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, तो छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होते हैं तो फिर सिम्टम्स आते हैं। तो एक किस्म से हम कहें कि महिलाओं में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। एक इसकी एक खास बात है, विचित्र बात है, कि अगर पूरी धरती को देखें तो भूमध्य रेखा है, धरती के बीचों बीच गुजरती है। तो जितना भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं तो सूरज जो है वो कम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो वहां इसका खतरा ज्यादा होता है। और हम जो है भूमध्य रेखा के पास हैं तो हमारा खतरा इतना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो बीमारी के मरीज

0: उनकी संख्या धीरे धीरे भारत में भी बढ़ रही है।
1: जी, तो जैसा आपने समझाया, बहुत ध्यान से मैं इस बात को समझ रही थी कि दूर होते जाना मतलब सनलाइट से कुछ संबंध है,
0: जी
1: और सनलाइट को हम कहते हैं तो विटामिन डी से कुछ संबंध
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: तो ऐसा है क्या?
0: बिल्कुल, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट संबंध है। और तभी देखिए, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है
1: अच्छा
0: तो उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो जोखिम है वो ज़्यादा होता है। पहले ये जो वर्ड है, जो शब्द है मल्टीपल, इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, तो इसमें बार बार अटैक्स आते हैं बीमारी के, इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब देखें तो नर्व जो है वो सॉफ्ट होती हैं और इसमें हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि जख्म हो जाते हैं नसों के ऊपर, और जब नसों के ऊपर जख्म हो गए तो जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनका ट्रांसमिशन है, न्यूरल ट्रांसमिशन है, वो कमजोर हो जाता है। और जब न्यूरल ट्रांसमिशन कमजोर हो गया तो जैसा हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट होंगे तो सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स आएंगे तो देखिए फिर ये एक लंबे तौर पे चलने वाली बीमारी बन जाती है। तो ये एक किस्म का क्रॉनिक प्रोग्रेसिव
1: जी जी
0: डिजीज है।
1: जी तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानना अभी ज़रूरी है, और कार्यक्रम का समय अभी है तो हम बहुत कुछ जानेंगे। जैसा आपने बताया कि लक्षण कैसे होते हैं, मल्टीपल टाइम्स अटैक आ सकता है, वो क्यों, कारण क्या बनता है, लेकिन पहले मैं डॉक्टर आशु से जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी, हम सोचते हैं आजकल जब हम बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, ये अब हम मान चुके हैं, पहले ये
0: जी
1: चीज़ें नहीं लोग अवेयर
0: जी
1: थे, पर अब ये लगभग सब जान चुके हैं, और हम कार्यक्रमों के माध्यम से बार बार इसकी अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप सर्जरी कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड।
2: जी
1: तो किस तरह से MS और फिजियोथेरेपी जुड़ती है?
2: मैम, जब हम लोगों के पास केस रेफर होता है आफ्टर न्यूरोलॉजिस्ट, सो उसमें किस केस पे, किस स्टेज पे वो केस रेफर हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना।
1: जी
2: तो सपोज अगर वो एक्यूट के एक्यूट में आता है और उसका किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, तो फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो मेनली सिम्टोमेटिक हो जाता है कि पेशेंट को किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, वो किस स्टेज में हमारे पास आया है। तो फिजियोथेरेपी का रोल एक्यूट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि MS के अंदर जो सबसे पहले देखा गया है, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एक आता है वो है फैटीग का। क्योंकि
1: अच्छा।
2: पेशेंट को बहुत जल्दी मसल फैटीग होने लगता है, तो मसल फैटीग होने के लिए उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करना, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमें उसको मेंटेन भी करना है, हमें उसको इंक्रीज भी करना है, उसकी पावर को, उसकी जो मसल टोन है उसको मेंटेन करना है, ताकि पेशेंट थके। अगर पेशेंट फैटीग में ज़्यादा जाता है तो उसका जो बीमारी का प्रभाव है वो बढ़ सकता है। प्लस इसके अंदर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि विटामिन डी का इसमें बहुत रोल है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का एक वॉकिंग का प्रोग्राम डिसाइड हो। पेशेंट सुबह के टाइम जब सूरज बाहर निकला हुआ है, सुबह 7 से 11 के बीच में बाहर जाएं, विटामिन डी का अपना लेवल को चेक करें। उसके अलावा जैसे उसमें हमारा एक जो मेन रोल आता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रीदिंग का भी मसल्स जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी रहती है। तो किस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेटर स्टेजेस में हम उसमें चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैलेंस की दिक्कत आती है, तो हर स्टेज बाय स्टेज हम लोगों का रोल उसके अंदर आता है।
1: फिजियोथेरेपी हर जगह उनकी मदद के
2: लिए, उसमें हम लोग। एंड एक और जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा रोल एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, एज ए बिकॉज वी स्पेंड मोर टाइम विद देम, तो कई बार हम लोग वो ऐसी चीज़ें भी उनसे शेयर करते हैं जाकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एंड उनकी टीम के, उनकी फैमिली के साथ बात करनी है, फैमिली को शेयर करना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस बेसिकली।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब उठाई है, और मैं चाहूंगी कि हम विस्तार से इसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले हमारे एक कॉलर जो जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, बताएं, स्वागत है, नमस्कार।
3: जी जी जी, आपको, डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। मेरा एक ये क्वेश्चन पूछना है कि जिसको ये बीमारी लग जाए तो क्या उसका कोई परमानेंट इलाज है या उसका परमानेंट इलाज नहीं है, और ये बीमारी जो है किस उम्र से शुरू होती है, क्या इसकी उम्र का भी कोई तगादा है कि बचपन से होती है या बुढ़ापे में जाके होती है।
1: ठीक है,
3: तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बीमारी एक घर में किसी को लग जाए तो क्या ये किसी दूसरे मेहमान, दूसरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को लग सकती है या नहीं लग सकती है, बस इसके मेरे क्वेश्चन।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारे प्रश्न हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर विकास जी।
0: जी जी जी, देखिए अग्रवाल जी, बीमारी जो है इसका नेचर ऐसा है कि ये शुरू में इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है, उसके बाद डीमायलिनेशन तक चलती है, यानी कि जो नसों का कवरिंग है वो धीरे धीरे एक किस्म से वो गल जाता है और वो कवर जो है वो उतर जाता है, तो नर्व जो है वो उनमें आपस में शॉर्ट सर्किट होता है और सिम्टम्स आते हैं।

0: तो ये बीमारी हम ये नहीं कहेंगे लाइलाज है, इसका अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन इसको क्योर नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक है, तो
1: सिम्टम
0: मैनेजमेंट
1: मैनेजमेंट
0: फोकस्ड
1: है
0: है।
1: जी।
0: और ये 20 से, दूसरा सवाल आपका, 20 से 40 साल की उम्र में होती है, लेकिन कभी कभी 16 साल के मरीज भी हम देखते हैं और कभी कभी 60 साल के भी देखते
1: तो क्या
0: हैं।
1: बाय बर्थ कोई केस नहीं होते
0: हाँ,
1: हैं
0: ये इनका तीसरा सवाल
1: जी?
0: था कि ये हेरिडिटरी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, लेकिन हाँ जेनेटिक कंपोनेंट है।
1: कंपोनेंट
0: तो अगर देखें, कहें कि पापा में है तो बेटे में जोखिम ज़्यादा होगा,
1: चांसेस बढ़
0: तो
1: जाते
0: चांसेस
1: हैं
0: बढ़ जाते
1: जी।
0: हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्राइमरीली एक ऐसी बीमारी है कि अगर मान लिया फादर में है तो डॉटर में होगी ही होगी, ऐसा नहीं है।
1: जी। एक और प्रश्न इन्होंने शायद कुछ ऐसा मैं मुझे जो समझ में आया कि एक से दूसरे में फैल सकती है क्या, तो कंटेजियस तो नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फॉलोड बाय डीमाइलिनेशन ऐसी किस्म की बीमारी है, तो ये एक से दूसरे में तो कभी भी नहीं फैलेगी। एक जब हम किसी मरीज की देखभाल करते हैं तो देखिए हमारा जो केयर गिविंग सपोर्ट है उससे प्यार बढ़ता है, बीमारी नहीं बढ़ती है, बीमारी घटती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और एक और चीज से प्यार बढ़ता है,
0: जी
1: गाने सुनने से,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: बहुत
1: अच्छे अच्छे
0: जरूरी
1: जब
0: है,
1: हम गाने सुनते हैं तो हमें गानों से प्यार होता है, हमें अपने चैनल से प्यार होता है, रेडियो
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर से भी प्यार होता
0: बिल्कुल
1: है। तो
0: बिल्कुल
1: एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, डॉक्टर
0: जी।
1: विकास की पसंद का ये गीत है और मुझे भी बेहद पसंद है, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

0: ये प्यारी सी मखमली आवाज़ थी यसुदास की, और सच में सही कहा गया है कि जीवन उसका है जो दूसरों को जीवन देता है। और ऐसे ही दो जीवन देने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे प्यारे डॉक्टर्स जो रेडियो डॉक्टर में आते हैं और हमें कृतज्ञ करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता वेट भी कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये गाना खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गाना भी आपको खूबसूरत लगा होगा ज़रूर, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। जी आप आएँ लाइन पर, अपना प्रश्न पूछें। हेलो
1: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
1: जी मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही।
0: जी जी राजेंद्र जी,
1: मेरी उम्र 48 वर्ष है और वेट मेरा 70 से 80 kg और 6 फीट मेरी हाइट है। तो पहले तो रेडियो डॉक्टर की भी डॉक्टर शालिनी मैम को, शालिनी तथा ही नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी। मेरा पहला सवाल, तीन चार सवाल है मेरे, मेरा पहला सवाल ये है कि जो MS की प्रॉब्लम है, डिजीज जो है ये, इसकी अगर मैंने सुना है कि जैसे हम घरेलू तौर पर जो कुछ फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं या कुछ अनाज होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है, जैसे नीता फली सब्जी खाओ या फिर शिरोधारा या ये शीर्षासन करो, तो मैं जानना चाहता था ऐसे कुछ डाइट या एक्सरसाइज, इससे इसकी रिकवरी हो सकती है, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बचपन में मैं होता ये था 1991 तक, मैं कोई भी मैटर उठाऊं एक बार, अगर उसको पढ़ लो एक बार या देख लो सुन लो, तो मुझे उसको दोबारा इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर आज मेरे को 3-4-5 जो है वो मतलब उसको दोहराना पड़ता, तब मेरे दिमाग में बात घुसती है,
0: मेमोरी लॉस है ना डॉक्टर साहब।
1: जी हाँ जी। तो क्या ये भी
0: उम्र के साथ,
1: हाँ जी, क्या ये भी MS से रिलेटेड है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि आपको धूप में बैठना चाहिए या विटामिन डी लेना चाहिए, तो मैम इन दिनों होता ही है कि जैसे ये फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज कूलिंग मांगता है, उसी तरीके से मेरा ब्रेन भी कूलिंग मांगता है, जहाँ हीट ह्यूमिडिटी होती है, ये फूड पॉल्यूशन डस्ट पॉल्यूशन होता है, तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, तो मुझे ठंडी या तो रेल करके उसकी मसाज करनी पड़ रही है, या फिर मुझे जो है ठंडे पानी से अपने सिर की सिकाई जो है सिकाई करनी पड़े, तब मुझे मेरा दिमाग काम करता है, और मेरे को इन दिनों स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है।
0: राजेंद्र जी बहुत सारे प्रश्न आपके हो गए हैं, हमें और भी श्रोताओं को समय देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो आपके ये तीन प्रश्न डॉक्टर साहब ने नोट किए हैं और वो बारी बारी से बता रहे हैं। सब्जियां फल, वैसे हम बात करने वाले थे डाइट का रोल क्या है इसमें, तो बता दें तो यहीं पे हमारे श्रोता सुन लेंगे।
3: जी जी, देखिए बैलेंस डाइट का रोल तो शालिनी जी हमेशा से है
0: जी,
3: लेकिन इनका पर्टिकुलर सवाल है कि कोई ऐसा फूड या ऐसा कोई फल जो कि ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है मेमोरी के हिसाब से, तो ऐसे काफी सारे हैं, जैसे अनार का जूस है या जैसे कोकोनट है, तो ये दिमाग के लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो इनके पहले सवाल का जवाब तो ये है।
0: अच्छा।
3: दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरी मेमोरी धीरे धीरे फेड हो रही है, तो अगर तो देखिए ये खुद अगर MS के पेशेंट हैं तो ये हमें नहीं पता, इनकी बात से थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन अगर नहीं है तो
0: स्लीप एपनिया की कुछ
3: बता रहे थे, वो लास्ट में बोल रहे थे, तो अगर मान लिया हम किसी भी MS के पेशेंट को देखें, ये 20 से 40 के सालों में शुरू होता है, मान लिया 30-35 पे शुरू हुआ, तो ये धीरे धीरे चलता है, और MS का जो मरीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, वो 70-75-80 तक आराम से जीवन बिता सकता है, तो

0: इस उम्र में 60 के बाद में इनको डिमेंशिया होने की संभावना भी रहती है। तीसरा इन्होंने कहा कि मैं कभी कभी मेरा जो दिमाग है वो मांगता है कि इसको कूल करना है,
1: हाँ
0: जैसे
1: जी,
0: फ्रिज को,
1: हाँ
0: तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। तो
1: अच्छा
0: ब्रेन फॉग जो है इसमें काफी कंफ्यूजन होता है और आप जो है इनडिसाइसिव स्टेट में होते हैं, तो ब्रेन फॉग अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एक सलाह तो इनके लिए है, ये पहले अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना पूरा चेकअप कराएं ताकि ये पता लगे कि ब्रेन फॉग क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या इनको ये प्री एमसीआई की स्टेज तो नहीं है। प्री एमसीआई का मतलब है माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की स्टेज तो नहीं, उसमें भी ब्रेन फॉग होता है, तो पहले अपनी जांच कराएं, उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और जो स्लीप एपनिया देखिए उसके लिए तो पूरा थोरो वर्कअप होता है, तो वो जब जाएंगे तो वो स्लीप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को इनको डॉक्टर रेफर करेंगे।
2: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक दैट ही शुड गेट इट हिमसेल्फ डायग्नोज्ड, क्योंकि ये काफ़ी सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते
1: जी,
2: हैं।
1: बहुत सारी
2: तो
1: चीज़ें बता
2: हाँ,
1: रहे
2: तो
1: थे।
2: अगर ये चीज़ अगर ये एस्टेब्लिश्ड केस नहीं है एमएस का, तो देन ही शुड नॉट वरी, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं और उसमें कई बार प्रॉब्लम बहुत कम होती है। और ये स्लीप एपनिया है और ये सब चीज़ें आजकल वैसे भी थोड़ी कॉमन चल रही हैं, तो दैट वे ही शुड नॉट वरी। फर्स्ट ही शुड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड, उसके बाद अगर इनको लगता है कि हाँ मुझे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं और बाकी टेस्ट जो हैं एमआरआई या जो भी उनके टेस्ट हैं उसके बाद अगर आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो बेटर रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर साहब देखिए, मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मैसेज किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो पहला मैसेज हम तक पहुंचा है वो लंदन से आया है और लिखने वाले हैं हमारे श्रोता जो हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट है ये इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं, मेरा नाम विश्वास है, मैं लंदन में रहता हूँ। एक प्रश्न है कि क्या चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ जीबीएस कैन लीड टू एमएस इन फ्यूचर, और मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नेचर ऑफ बोथ डिजीजेस आर सिमिलर एंड जीबीएस हैज बीन इन राइज इन इंडियन चिल्ड्रेन। तो डॉक्टर विकास क्या कहेंगे?
0: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। डॉक्टर विश्वास नमस्कार, और देखिए आप भूमध्य रेखा के दूसरी साइड से उत्तरी गोलार्ध से हमें सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका जो सवाल है देखिए रिसर्च लेवल का सवाल है, क्योंकि दोनों जो बीमारियां हैं उनकी नेचर सिमिलर हैं और दोनों में ही एक किस्म से डिमाइलिनेशन होता है वेरिएबल डिग्री का, लेकिन दोनों का कोअकरेंस भी हम कहें तो हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले अगर गुलेनबेरी सिंड्रोम हुआ है तो उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भारतीय बच्चों में गुलेनबेरी सिंड्रोम देखा गया, तो बच्चों में क्या कुछ समय पहले बड़ों में भी कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, तो वो कुछ समय पहले की बात है, लेकिन जहां तक इनके सवाल का जवाब है तो हम तो कहेंगे अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है और एक थोरो रिसर्च के बाद ही इस सवाल का जवाब दिया
1: जी,
0: जा सकता
1: और
0: है।
1: रिसर्च हर फील्ड में हो रही है, एमएस के क्षेत्र में भी हो रही है, तो हम
0: जी
1: जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अनीता तेजवानी जी ने हमसे लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर्स एंड शालिनी जी, एमएस क्यों होता है, पहले हम ये जानें, क्योंकि इनका प्रश्न बहुत बेसिक है और ये हम सब जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको एमएस होने की क्या संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो ऑटो इम्यून की श्रेणी में आती हैं, तो ये बताएं
0: जी। देखिए पहला सवाल है इनका कि क्यों होता है, तो पहला तो है जैसे फीमेल जेंडर महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, हम ये नहीं कह रहे महिला होना एक कॉज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन महिलाओं में संभावना ज्यादा है। दूसरी बात जिन जो धूम्रपान करते हैं उनमें भी संभावना ज्यादा है। एक वायरस है जो कि 95% लोगों में होता है, एप्स्टीन बार वायरस, तो एप्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन है तो संभावना ज्यादा होती है। एक किस्म का एक हर्पीज वायरस होता है, तो अगर वो हो गया है किसी को वायरल इन्फेक्शन होते ही रहते हैं तो भी संभावना ज्यादा होती है। लो विटामिन डी अगर किसी का है या उसका सन एक्सपोजर कम है तो संभावना ज्यादा होती है, या फिर अगर मान लिया घर परिवार में किसी को एमएस है तो संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो हुआ जो कारक है। अगर कोई कहे कि एक सिंगल रीजन आप बताइए कि एमएस क्यों होता है, तो कोई एक सिंगल रीजन नहीं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अब देखिए जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अगर किसी में हो तो संभावना ज्यादा होगी। तो अगर हम दूसरे जो इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बाकी ऑटोइम्यून डिजीज हैं जैसे Type 1 diabetes है, अस्थमा है फॉर एग्जांपल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनके साथ एमएस की एसोसिएशन है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉज है, ये वजह नहीं है, लेकिन संभावना तो बढ़ती है।
1: डॉक्टर अशोक ये बताइए, जैसे फिजियोथेरेपी को डॉक्टर विकास ने कहा कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इसमें जो फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है, जैसा आप पहले भी मुझे बता रहे थे कि किस तरह से आप गाइड करते हैं

0: पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, और इवन जो आते हैं आपके पास, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कैसे किया
1: मैम
0: जाता
1: इसमें
0: है।
1: क्या होता है, बिकॉज हम लोगों की ग्रेजुअल मसल वीकनेस की तरफ चली जाती हैं, हमारी लोअर लिम्स की जो मसल्स हैं, हिप की मसल्स हैं, नी की मसल्स हैं, जिससे पेशेंट्स में इनिशियली टाइटनेस होती है, फिर वो धीरे धीरे अगर उनको ध्यान नहीं रखा गया तो वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, जिसके कारण उनको चलने फिरने में, बैलेंस में और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि उनको, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके साथ जो केयर गिवर्स हैं, उनको एक होम प्रोग्राम बताया जाए, ताकि वो उनको बार बार क्लिनिक पे आने की, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। इसको हम बोलते हैं कि मेंटेन द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, वो जॉइंट की जो एक मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ उनको इसमें पॉस्चर के प्रॉब्लम आने के भी चांसेस रहते हैं, पॉस्चर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पॉस्चर को कैसे सही मेंटेन करना है। अगर कुछ हमें ऑर्थोटिक डिवाइस चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्चर को या डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कुछ बैलेंस के इशूज़ आ गए हैं लेटर स्टेजेस में, तो उसमें हम लोग कुछ प्रोप्रायोसेप्टिव और बैलेंस एक्सरसाइजेस बताते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी गाइड करते हैं कि जो घर का एटमोसफेयर हो वो पेशेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि इसमें कई बार विजन लॉस के डिप्लोपिया भी हो जाता है और कई बार ब्लर्ड विजन भी रहता है। तो उनका जो वॉशरूम है, उनका जो कमरा है, उसमें सब चीज़ें ऐसी रहे जाकि अगर कोई चांस है फॉल होने का तो उसको हम हटाएं वहाँ से, या अगर हम और कोई मेथड उसमें यूज़ कर सकते हैं तो उसके माध्यम से हम उनका जो एक फ्रेंडली एटमोसफेयर बने। क्योंकि जब इनके एक्यूट सिम्टम्स होते हैं तब कई बारी देखने में और सेंस में और स्किन की भी मतलब इश्यूज आते हैं, तो जो मल्टी उसके हिसाब से उनका जो सिस्टम सारा का सारा सेट हो और उनके हिसाब से उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन हो। प्लस आज की डेट में एक्वा थेरेपी का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल आ गया है, तो जिसमें कि जाके पेशेंट को थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर पा रहा हूँ, बिना थके उस पानी के अंदर हम कुछ सिंपल एक्सरसाइज उनको बताते हैं, जिसको कि जैसे अवेलेबिलिटी है उनकी उसके हिसाब से जाके हफ्ते में 2 या 3 दिन। इसके अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल एक और भी है, जो कि मोस्टली एमएस पेशेंट्स के साथ हम लोग प्रोग्राम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस हफ्ते में 2 या 3 दिन, एक लिमिटेड टाइम के लिए हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज टू मेंटेन देयर मसल, प्लस हम लोग हफ्ते में 2 या बाकी बचे हुए दिन में वॉक या फिर हम लोग एक्वा थेरेपी, ताकि पेशेंट्स जो हैं उनकी मसल्स फैटीग में भी ना जाएं और जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें ताकत बनी रहे और उनके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आए, ताकि जब डिसीज़ का एक्यूट फेज ख़त्म हो तब वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके।
0: जी जी, बहुत विस्तार से आपने बता दिया है कि किस तरह से, बहुत सारे श्रोता जानना चाह रहे थे कि क्या लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का, डाइट की भी हमने बात करी, इसका भी रोल है, योग का भी रोल है क्या इसमें, आप कुछ बता
1: मैम। योगा इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली, तो अगर एंड आई फील एज वी ऑल नो कि योगा तो एक मेंटेन करने के लिए है। अगर हमारे के सब जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, हमारे को कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, हमारे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम स्टार्टिंग से ही योगा को ऐड कर रहे हैं, प्राणायाम से लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से लेके जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, नॉर्मल हमारे पॉस्चर की चीज़ें हैं, तो योगा से उससे बढ़िया तो फिर और कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, बट उसको अगर हम सुपरवाइज इनिशियली उसका भी अगर हम सुपरविजन के अंदर कर लें और टाइम टू टाइम अगर उसको हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें तो उससे हमें उसमें काफ़ी मदद मिलती है।
2: जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अब जो चल रहे हैं उनमें ये पता लगता है कि अगर एमएस के जो मरीज हैं वो शुरुआत में ही अगर योगा करें, सुपरवाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो अगर शुरुआत से ही योगा करें तो उनको जैसे डिप्रेशन एक इमोशनल सिम्टम, मेंटल सिम्टम है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है, फिर इनको बॉडीली पेन होते हैं अलग अलग जगह पे वो कम हो जाता है, और साथ में इनको जो स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस जो है, मसल स्पाज़म जो है या ब्लैडर स्पाज़म है वो कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी जो इश्यूज़ होते हैं काफ़ी स्पेशली लेट स्टेज में, तो उनके लिए भी योगा, अनुलोम विलोम या प्राणायाम काफ़ी यूज़फुल है। तो एक और ख़ास सिम्टम होता है इनमें क्रॉनिक फटीग, ये थके रहते हैं एमएस के मरीज, बहुत ज्यादा थके रहते हैं, तो उस थकावट के लिए भी योगा एक एनर्जी का काम करता है। तो एविडेंस अब आ रहा है धीरे धीरे कि योगा की यूजफुलनेस है, और जैसा इन्होंने कहा कि एक नेचुरल फॉर्म जो कि कल्चरली एक्सेप्टेड है, लो कॉस्ट है और यूनिवर्सली अवेलेबल है, तो अब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो छोटे गांव में ना हो या छोटे शहर में ना हो, तो वहाँ पे अगर कोई मरीज होता है तो वो सीख के किसी से योगा करे तो उसको फिजियोथेरेपी जैसा फायदा हो सकता है।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं एमएस पर, आज है वर्ल्ड एमएस डे। हमारे जो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और हमारे दूसरे

0: रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास धीकव, आप क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डॉक्टर विकास के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में रिसर्च तो कर ही रहे हैं लेकिन गानों में भी अच्छी रिसर्च है आपके ऊपर, गाने में क्या कहेंगे?
1: मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको गाने नहीं पसंद हो।
0: नहीं, पसंद तो हमें है लेकिन हमें पता है आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, अगर हमारे श्रोता थोड़ा सुन लें वो डिसाइड कर सकते हैं।
1: हाँ, अगर आप
0: दो चार लाइनें
1: तो,
0: सुना दीजिए।
1: जी जी जी तो
0: एक ये प्यारा सा गीत है डॉक्टर साहब, मैंने निकाल रखा है अभी, ए अजनबी दिल से फिल्म का, ये थोड़ा सा सुनाएंगे अगर आपको आता हो तो।
1: जी जी जी

रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, एमएस डे जिसे कहा जाता है। और देखिए डॉक्टर साहब, सिर्फ हम ही तारीफ नहीं कर रहे हैं आपकी, बहुत सारे श्रोता भी हमें तारीफी मैसेज कर चुके हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा आपने गाया है। फरीदाबाद से कपिल ने लिखा है बहुत, और तालियां भी बजाई हैं उन्होंने, इमोकन्स भी भेजे हुए हैं कि बहुत अच्छा गाया सर ने, आपकी चॉइस भी काफ़ी अच्छी है, तो थैंक यू कर दीजिए। और बहुत सारे मैसेज हमारे श्रोताओं ने ऐसे भी लिखे हैं जो अपनी समस्याएं हमसे पूछ रहे हैं। तो ये हमें मैसेज करा है मीरा सिंह ने सिलचर आसाम से, और यही नाम लिखा है उन्होंने, शायद मीरा सिंह।

0: सिलचर आसाम, इन्होंने लिखा है कि मेरे राइट लेग के अंगूठे के जॉइंट में कभी कभी बिजली जैसे करंट लगता है और फिर जलन भी फील होती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी की कमी है मेरी, एज है 59 प्लस, क्या करूं, योगा भी करती हूं। और एक इन्होंने प्रश्न लिखा है कि मेरे हस्बैंड को हर्पीस शोल्डर्स के नीचे हुआ था पर अब भी वहां इचिंग होती है, तो बहुत ड्राइनेस भी है, उनकी एज 68 है।
1: जी, देखिए ये हो सकता है मीरा जी काफ़ी चलती हों, कभी कभी चलने की वजह से या जो हम फुटवेयर पहनते हैं उसकी वजह से भी कोई एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हल्की सी हो जाती है, तो बिजली का झटका जैसे है वैसे लगता है। और जहाँ तक बात है इनके हस्बैंड की, तो इन्होंने ऐसा बताया है कि शोल्डर के नीचे इनको हर्पीज हुआ, तो वो जॉस्टर हुआ होगा, तो उसमें ये हल्के हल्के बिजली के झटके ऐसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि अगर MS हो, ये तो MS नहीं है ऑब्वियसली, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक फिनोमेना होता है, उसको हम लर्माइट फिनोमेना बोलते हैं। लर्माइट में क्या होता है कि जैसे ही आप गर्दन नीचे करते हैं या गर्दन साइड में करते हैं, तो बिजली के झटके लगते हैं और ये मल्टीपल लगते हैं, और ये इसकी पहचान भी है। और आम इंसान एक इसी लक्षण से आसानी से MS को पहचान सकता है। बाकी भी और हैं, जैसे अगर किसी को हम एक कहें कि झंझनाहट हो रही है हाथ में या पाँव में, झंझनाहट अक्सर हाथ से शुरू होती है, हथेलियों से शुरू होती है, उसके बाद फोर आर्म में जाती है, या फिर अचानक हम देखें कि लेफ्ट साइड में एक किस्म से वीकनेस शुरू हो गई है या पैरालिसिस आ गया है या पैरापरेसिस हो गया है, दोनों टांगे जो हैं वो उनमें कमजोरी आना शुरू हो गई या बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो ये तो हुए इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो जहाँ तक मेंटल सिम्टम्स है, तो उदासी रहना या बहुत एंगजाइटी होना, और जो कॉग्निटिव सिम्टम्स है, याददाश्त का धीरे धीरे कमज़ोर होना, चीज़ें रख के भूल जाना और बाद में स्ट्रगल करना, और जो ऑक्युलर सिम्टम्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, अचानक देखिए एक आँख की रोशनी चली गई या दोनों आँखों की रोशनी चली गई, तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी हो सकता है, या धीरे धीरे रोशनी जा रही है या आंखों के सामने बहुत धुंधलापन नजर आ रहा है, तो MS को पहचानना आसान है। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन है, डायग्नोसिस लेट होता है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये जो झंझनाहट है ये किसी और वजह से होगी, ये MS की वजह से ना हो, और क्योंकि ये जो बीमारी है ये रेयर है, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से 2 लाख मरीज ही हैं MS के, तो ऐसा नहीं है हर एक झंझनाहट MS नहीं है और हर एक सुनपना जो है वो MS नहीं है। तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपना जो थोरो इवेल्युएशन वो करवाइए, तभी जो बीमारी है देखिए उसका निदान हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है।
0: आपने बताया बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हो सकते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और फिर ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ही है
1: जी
0: इसका,
1: जी
0: लेकिन जैसे आपने बताया कि किसी को ऐसा फील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है,
1: जी
0: झुंझुनाहट है या जिस इन जितने भी आपने सिम्टम्स बताए,
1: जी
0: तो एक तो वो पहुंचे सबसे पहली
1: जी
0: बात है
1: जी
0: डॉक्टर से कंसल्ट
1: जी
0: करें, पर वहां जाकर क्या टेस्ट किए जाते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये MS ही है।
1: जी देखिए ऐसा होता है कि अगर तो आप एक MS का फॉर्म होता है रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग 85%
0: अच्छा
1: होता है, तो अगर मान लिया RR MS है, बार बार अटैक हो रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री है, तो वो इटसेल्फ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत पता लग जाता है कि झंझनाहट है, वीकनेस है, स्पाजम है या बाउल ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का, दोनों का MRI ब्रेन किया जाता है, और ये गैडोलिनियम एनहांस होता है, GD एनहांसमेंट हम इसको बोलते हैं, तो उसमें जो ये पैचेज हैं, जो स्पॉट्स हैं, तो वो दिखते हैं, तो पैचेज और स्पॉट्स जो हैं वो, और इसके साथ में जो CSF का टेस्ट है जिसमें ओलिगोक्लोनल बैंड होता है, तो वो दिखता है, और इसके अलावा हम सोमैटो सेंसरी पोटेंशियल इवोक पोटेंशियल, वो एक किस्म से नसों की जांचें होती हैं, तो वो करवानी पड़ती है। तो समरी अगर करें तो नसों की जांचें, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसका पानी, और MRI ब्रेन, और MRI जो हम बोलें कि आपका स्पाइन है उसका, तो इससे फिर डेफिनेटिवली हम डायग्नोज कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: कंफर्मेशन हो जाता है।
1: जी,
0: जी देखिए ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, ओखला संगम विहार से लिख रहे हैं कि डॉक्टर विकास और डॉक्टर आशु, शालिनी मित्तल, आपको तीनों को सादर प्रणाम, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी हमें मिलती है, तो धन्यवाद रणधीर जी, आप इसी तरह से जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ। और अनूप कुमार लिख रहे हैं झारखंड से कि मुझे रांची में आप रहते हैं, लिख रहे हैं कि BP शुगर है मुझे काफ़ी सालों से, 55 ईयर्स की एज है शायद इन्होंने लिखा है क्या, सिंस 37 ईयर्स मुझे ये बीमारी है और ईयर लीकेज 1 साल से हो रहा है, रिंगिंग साउंड फील होती है, वाइब्रेशंस फील होते हैं बैकबोन में, तो क्या ब्रेन इन्फेक्शन है या क्या मैं करूं, कि प्रिकॉशंस क्या लूं, एक्सरसाइज क्या करूं?
1: जी, देखिए BP शुगर है इनको और लंबे

0: समय से है, तो ये हो सकता है कि अगर इनका, हमें नहीं पता इनका शुगर कंट्रोल में है या नहीं, इनका एच बी एवन सी क्या है तो, या ब्लड शुगर रैंडम कितना है, तो ये अपना एच बी एवन सी और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, अपना बीपी कंट्रोल में रखें, तो हो सकता है कि ये कोई न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं इनको, डायबिटिक न्यूरोपैथी के, तो उसकी वजह से इनको ये झंझनाहट होती है, तो अपना थोरो चेकअप करवाएं, उसके बाद ही फिर एक फाइनल इवेल्युएशन होगा जिससे पता चलेगा कि इशू क्या है।
1: जी, पारुल जानना चाह रही हैं डॉक्टर साहब बड़ौदा से। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या MND और MS सेम है? MND इन्होंने ये भी शॉर्ट में लिखा है, आप समझ
0: बिल्कुल,
1: सकते
0: मोटर
1: हैं।
0: न्यूरॉन डिजीज बिल्कुल
1: जी
0: अलग है। बोले तो ये दो मरीज होते हैं 1 लाख पे, इतना रेयर है, और MS के 20 से 40 मरीज होते हैं 1 लाख पे। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले लंदन से कॉल आया था, तो इंग्लैंड में देखिए 150 से 200 मरीज होते हैं पर 100,000, तो वहाँ पे इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है। तो MND बिल्कुल अलग है, सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं दोनों के, जो क्लिनिकल फीचर्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां दोनों अलग है, कोर्स भी
1: और
0: दोनों
1: पता
0: का
1: तब
0: अलग है।
1: चलता होगा जब पूरा डायग्नोसिस होता
0: जी जी
1: होगा
0: जी
1: उनका, क्लिनिकल डायग्नोसिस।
2: डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई।
1: अच्छा, हाँ बोल।
2: न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सारी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका किस कारण है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइन की है, या उनका क्या प्रोग्रेशन है, कितना लाइफ है, कितना हम उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम रह सकते हैं, तो वो फिर सब डायग्नोसिस के बाद ही
1: और
2: आएगा।
1: डायग्नोसिस के बाद ही फिर जैसा आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट हम देना शुरू करेंगे, जैसे
2: बिल्कुल
1: जैसे उनके
2: जी,
1: सिम्टम्स होंगे
2: बिल्कुल
1: वैसे वैसे हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशु, हम पहले बात कर रहे थे, आपने बीच में बोला कि बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली फ्रेंड्स केयर
2: जी
1: गिवर्स का, सोशल एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आदमी के लिए। तो जब इस तरह के केयर गिवर्स आपके साथ आते हैं MS के पेशेंट के साथ, वो कोई एक यंगस्टर भी हो सकता है, फैमिली का ब्रेड अर्नर भी हो सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप?
2: मैडम, एक्चुअली MS का या किसी भी ऐसी इस टाइप की लंबी बीमारी जिसे हम कहें क्रॉनिक बीमारी, न्यूरोलॉजिकल स्पेशली, तो उसमें इट हैज़ टू बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अगर एक सिर्फ एक डॉक्टर के पास चले जाएं या सिर्फ एक फिजियोथेरेपी के पास चले जाएं, या हम सोचें कि हमने ट्रीटमेंट चल रहा है हम उससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, इसमें हमारा इमोशनल, इसमें हमारा साइकोलॉजिकल कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आजकल हम गूगल पे काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बिना ये जाने कि हम किस स्टेज पे हैं या हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें फैमिली का और केयर गिवर्स का रोल, तो उसमें एक सोशल वर्कर का रोल बहुत आ जाता है, जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले उनको ये बताना कि लाइफ इस बीमारी के आगे भी लाइफ है। फिर उस टाइप की कुछ कम्युनिटी बनी हुई है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे स्पेशली MS के पेशेंट्स को जाके आप मिल सकते हो, आप जो जो 15-20 साल से ये जो एक्यूट केस है, अगर वो वहाँ जाके अपने जो 15-20 साल से इस उसके बीमारी से जूझ रहे हैं कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनके और उनको क्या क्या दिक्कतें आई और उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं, कि क्या हम प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि अब ये हो गया अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वो एक बहुत गलत अप्रोच है। तो उसके बाद हम लोग अपने को कैसे लाइफस्टाइल को हम अपने को बेटर कर सकते हैं, और कम्युनिटी का रोल है कि कम्युनिटी के लिए हम, ताकि उस टाइप से एक्सेप्टेंस हो, बिकॉज अगर हम अपना इनिशियल शुरू से ध्यान रखते हैं तो आई थिंक हम बहुत लास्ट तक उसमें अपना एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें पूरी फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोशल वर्कर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्योंकि कई बार किसी लेवल पे कुछ हमें असिस्टिव डिवाइसेस की यूज़ पड़ती जरूरत पड़ती है, या कई बार हमें एम्बुलेशन में दिक्कत पड़ रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, अगर ये हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी तो हम एक पेशेंट को जो कि MS की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको हम काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं।
1: जी, ये जो अभी पारुल ने बड़ौदा से पूछा था डॉक्टर साहब MND के बारे में, इन्होंने आगे ऐड किया है कि मेरी सिस्टर को MND है, तो इसीलिए ये जानना चाहती थी, क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक हो सकती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि मैम क्या आप रेडियो डॉक्टर में MND पर भी एक सेशन रख सकती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे देखते हैं अपने किसी क्लोज को तो हमें बहुत दुख भी होता है। आई एम वेरी सैड टू सी माई सिस्टर इन द सच सिचुएशन। तो वो हम समझ सकते हैं आपकी बात पारुल जी, बिल्कुल समझ सकते हैं, और बिल्कुल हम इस पर भी कार्यक्रम जरूर करेंगे। और अभी फिलहाल मैं डॉक्टर से पूछूंगी।
0: जी, देखिए MND जो है एज अपोज टू MS एक गंभीर बीमारी है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं, अगर आपका डायग्नोसिस टाइम पे हुआ है, आपका ट्रीटमेंट ठीक समय से शुरू हो गया है, और आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है, आप मोटिवेटेड हैं, आपके इमोशनल डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन अच्छे से लुक्ड आफ्टर है, और आपकी केयर गिविंग सपोर्ट बहुत अच्छी है, फैमिली सपोर्ट अच्छी है। जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है वो बिल्कुल अलग किस्म की बीमारी है, उसमें

0: ब्रेन स्टेम सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, निगलने में दिक्कत होती है, फिर बाद में जो अपर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट होता है, और ये बेसिकली मसल्स की अट्रॉफी हो जाती है, तो हाथ पांव जो है वो एक किस्म से बहुत ढीले पड़ जाते हैं, तो एग्रेसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। दवाइयाँ हैं, सपोर्ट है, लेकिन इसको बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग की न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू ज़रूरत होती है। तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है कि ये भी एक बीमारी है, तो
1: जी
0: जिसके बारे में जागरूकता बहुत ही कम है। एमएस के बारे में तो फिर भी धीरे धीरे लोगों को पता
1: जी
0: लग रहा है,
1: जी
0: तो वो फ्यूचर में किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर जरूर कार्यक्रम शीघ्र करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। और ये हमें प्रश्न किया है, हमें लिखकर भेजा है, हमारे एक श्रोता हैं प्रेमपाल सिंह, दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को चेहरे पर हर्पीज हुई थी और काफी दिनों तक इलाज करना पड़ा, कि ये जानना चाहते हैं क्या एमएस की वजह से हर्पीस भी होती है, क्या दोनों का आपस में संबंध है?
0: नहीं, देखिए, 55 साल के बाद में वेरिसेल इन्फेक्शन होते रहते हैं, और उसकी वजह से फेस पे या अपर चेस्ट पे या ट्रंक पे दाने हो जाते हैं, काफ़ी इचिंग होती है, तो वो एक कॉमन बीमारी है, समय के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन 55 साल के बाद जो अडल्ट हर्पीज़ होता है, उसको उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ही इसका सोल्यूशन है।
1: जी, और ये मैसेज लिखने वाली हैं अंजलि सिंह सिलीगुड़ी से। ये लिख रही हैं, रात को सोने पर मैं झंझनाहट महसूस करती हूँ और नींद भी मुझे इसलिए अच्छी नहीं आती, क्या करूँ? 65 ईयर्स एज है, और बहुत अच्छा गाना गाया डॉक्टर साहब आपने ये भी इन्होंने लिखा है साथ
0: अंजलि
1: में
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि यही आपका इलाज है कि सोने से पहले मुझे लगता है आप अच्छा म्यूजिक सुने, और आकाशवाणी पे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक चलता रहता है, तो सूदिंग म्यूजिक सुने। और थोड़ा सा जो जैसे फिजिकल मेडिसिन में एक एक्सरसाइज होती है जिसको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन बोलते हैं, पीएमआर, तो कहीं से पीएमआर सीखें, थोड़ा सा मसल्स की टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है तो वो करें, थोड़ा योगा भी कर सकते हैं, और टहलें, परिवार के आसपास रहें, और आपको मालूम है कभी कभी अकेलेपन से भी दिक्कतें होती हैं, तो ये अगर आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा कुछ अखबार या कोई पत्रिका पढ़ें, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, अच्छी नींद आएगी।
1: जी, आपने कहा कि रिलैक्स करना जरूरी है, और अभी अंजलि जी भी शायद सुन रही हैं कार्यक्रम, सुन रही है ना अंजलि जी? तो आप सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा गीत यहाँ पर आपके लिए, हम सबके लिए? एक मुझे याद आ गया, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि गाने भी सुनते रहना चाहिए,
0: जी
1: है
0: जरूरी,
1: ना
0: तो
1: तो एक गीत सुन लेते
0: आवश्यक।
1: हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। हैट्स ऑफ टू ब्रिलियंट टीम ऑफ रेडियो डॉक्टर। ऑल डॉक्टर्स डिजर्व बिग थैंक्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो गुड एंड टेंशन फ्री, लिख रही हैं प्रोमिला बेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर विकास, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, लिख कर भेज रही हैं मंजू भाटिया द्वारका से, दिल्ली से। और यशपाल जी हमें लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच शाली मैम एंड बोथ डॉक्टर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दिस लाइव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। आप ये बताएं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एमएस एंड सिजोफ्रेनिया?
1: हाँ, दोनों अनकनेक्टेड है। सिजोफ्रेनिया एक प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और एमएस एक प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन एमएस में कभी कभी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं
2: लेटर स्टेज।
1: हाँ, ऑब्वियसली एडवांस फेज में आते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली फेज में कॉग्निटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, तो इट वेरीज
0: जी। और अंजलि जी भी हमें दोबारा से थैंक यू बोल रही हैं, आपने उनको जो गीत सुनाया आपने और फिर बाद में हमने जो गीत सुनाया उन्हें, अभी वो दोनों ही अच्छे लगे। और ये लिख रही हैं कि मैं गाने की बहुत शौकीन हूँ, तो चलिए एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, ये गाने सुनेंगे और बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री रहेंगे आगे से अंजलि जी, और हमारा कार्यक्रम जरूर सुनती रहेंगी। समय कम है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि रिसर्च में हैं आप, न्यूरो साइंटिस्ट हैं और हेल्थ रिसर्च में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, तो इस फील्ड में यानी एमएस के फील्ड में क्या कुछ हम अच्छी खबर सुन सकते हैं कमिंग डेज में?
1: जी, एक दर्जन दवाइयाँ अवेलेबल हैं। आप देखिए 1970s में ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेरॉयड था, उसके बाद में बीटा इंटरफेरॉन आया, ग्लैटियमर एसिटेट आई, फिंगोलीमोड आ गया, टेरीफ्लुनामाइड, और अब बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गए हैं। तो अब एक वे फॉरवर्ड है, कोई ऐसी दवाई जो कि जो माइलिन चला गया है या जो इंसुलेशन चला गया उसको रिप्लेस करे, इस पर काम हो रहा है। और सस्पेक्टेड है कि एप्स्टीन-बार वायरस जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये सस्पिशन है। तो उसके लिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट अभी चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 5 to 10 years में कोई ना कोई और ब्रेक थ्रू आए।
0: जी, तो अच्छी खबर आ सकती है और रिसर्च इसीलिए की जाती है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उस बीमारी पर हम काबू पा सकें, और ऐसा भी बहुत शीघ्र होगा। डॉक्टर आशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, विटामिन डी, और आप एक रूटीन देते हैं पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को समझाते हैं किस तरह से, पर मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए?
2: मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इलनेसेस बेसिकली। तो राइट फ्रॉम अ पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली, टू बी विद पॉजिटिव पीपल, और इसमें हम अपने आप को जितना बिजी रखेंगे अदर एक्टिविटीज में, बिकॉज देयर इज लाइफ बियॉन्ड दिस। इनिशियली जरूर हम लोग कई बार शॉक फेज में चले जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी सी कि इसका बहुत इसमें इसके साथ भी लाइफ बहुत अच्छी तरह से दी जा सकती है, बट हमें थोड़ा सा उसके अंदर अपना एक डिसिप्लिन, एक अपना मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, थोड़ा अपने को एक्वाथेरेपी, अपने जो काम है हम उसमें रखें, अपना जो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, उनके साथ हम एक हेल्दी रिलेशन रखें अपने को, एंड स्टार्ट कीप लुकिंग फॉर दी व्हाट आर दी अदर एवेन्यूज अवेलेबल, और उसके साथ में एक बेसिक मिनिमम अपना डॉक्टर का जो विजिट है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तब जाते हैं जबकि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जो भी रूटीन हमारा है एक

0: डॉक्टर के विजिट का, उसको हम ध्यान रखें, और छोटे से छोटा सिम्टम अगर कोई आ रहा है उसको इग्नोर ना करें. और जो हमारा एक डिसिप्लिन है लाइफ का, जिसके साथ कि हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग कर सकते हैं, तो उसके साथ हम बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी लाइफ मेडिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के साथ हम लोग जी सकते हैं.
1: जी, तो आज हमने बात की मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, और हमारे साथ हमारे दो रेडियो डॉक्टर्स रहे, डॉक्टर विकास धिकव, क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु और डॉक्टर विकास आपको यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए. और सभी लिसनर्स का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े, और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ. अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं. परिधि लिख रही हैं दिल्ली से, बिग थैंक यू टू शालिनी जी एंड ऑल डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन. कीप इट अप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड इन टू रेनबो एंड रेडियो डॉक्टर. ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए. अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हाँ जी मेगा जी, हेलो हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, माइक तो चेक हो चुका है नो, तो अनु मेरी आवाज आ चुकी है। हेलो जल्दर प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। टुडे इज ए पटैटो डे, जिमें कि आलू दिवस। आज आलू दिवस से गलबात करेंगे अपने श्रोतिया नाल, ते कि आलू बारे की जानते हैं, आलू बारे की डिस्कस कर सकते हैं आप। वेल हेलो,
1: हेलो सर जी, सत श्रीकाल
0: सत श्रीकाल जी, की नाम थोड़ा
1: जी? मैं बलदेव नगर तो सोनू गल कर रहे हैं जी।
0: अच्छा जी, बलदेव नगर तो सोनू गल कर रहे हो, है ना जी?
1: हाँ जी
0: जी, लाने हमारे तुसी जी भी लाने तुसी, कहना मैं जी बलदेव नगर तो

0: हाँ जी दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो इस सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर ते विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, मजा नहीं आता म्यूजिक। आरजे रमनीश इज हियर। बहुत टाइम वेस्ट ना करा, सीधी कॉल कर अपने सरोतिया नु, चेक दो भी सरोते। हेलो
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। की नाम तुहाडा? कुलदीप सिंह बोलते हो? अच्छा जी, बोलते हो ना। ओके जी कुलदीप जी। कुलदीप जी, सब तो पहले तुहानू आलू दिवस दी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी। ते तुसी इदा करो हुण, अपने हाथ च आलू फड़ लो जी।
1: फड़ लिया सर।
0: ते क्यों फड़िया पहले दसो, ये नहीं पुछेंगे क्यों सर? देखो बस यही कह रहा है कि आलू अंदर जाना बाहरों डंग मारना जी, मतलब बाहरली चीजा ज्यादा पसंद है सानू, मतलब बाहरलियां चीजा ज्यादा पसंद है थानू, है ना जी? जी बारो डंग मारन तो डरते भी हो तुसी, है ना? अच्छा फिर, अच्छा जी, अच्छा फिरते रहते सप?
1: हेलो,
0: मैं क्या फिर सप फिरते रहते है? आजाद घूमते है पूरे। चलो वधिया गल है, पर इदा ना घूमन दिया करो महाराज जी। और की जी जी, मारे तुहाडे आलू ने चिपक गया फिर। आलू दिवस तो उदो ही मनना जिस दिन सप चिमड़ गया उहदे नाल। और की चलो वधिया। ते दसो अपना कुलदीप जी, आलू पसंद ने तुहानू?
1: हां जी हां जी।
0: अच्छा जी क्यों?
1: आलू वधिया लगदे सर।
0: हां ये गल पे भी ये जवाब सही दिता, मैं कहा यार कहूंगे इहदा भी कुछ गलत जवाब दूंगे।
1: नहीं सर,
0: चलो मेरे चलो मेनू एक जवाब दसो फिर अपना की कहते कुलदीप जी। ते मेरा सवाल ये है कि कहते ना जे आलू की शादी हो जाए तो जेड़ी जेड़ी ओहदी सॉरी कौन होवेगी?

0: गाजर की
1: गाजर
0: मूली
1: भी खाती होगी,
0: है जी। नहीं
1: वो छोटा या जी हंटी है, थोड़ी ज्यादा है वो का राड़ी बना देंगे।
0: जी हाँ जी, वही मैं पुछदा पाया, मैं थानू ऑप्शन भी दिंदा, जे आलू दी कहिंदे शादी हो जाए ना ते ओदी जिहड़ी सौरी कौन होवेगी, आ गाजर के मूली।
1: सर गाजर भी बहुत
0: गाजर
1: चंगी
0: होगी।
1: लगते हैं, ये साड़ी ना फेवरेट सब्जी है जी गर्मियां दी।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी
0: ठीक है जी, मैं कि मेरा मेरा सवाल था, तुम जवाब नहीं दिता। पर गाजर की मूली आलू दी सॉरी कौन हो गया, गाजर की मूली
1: गाजर कह दो सर।
0: गाजर कह लो। बढ़िया गल दसता, मैंने खुद नहीं पता सी ये मूली कह देंदे, मैं वो भी कह देना। नहीं बढ़िया, गुड आंसर। पर गल है कि गाजर आलू नू मूली ना कितना खाओगे। अच्छा जी हाँ, गाजर आलू तो सुने है जी, मूली मूली आलू नहीं सुने है ना जी।
1: हाँ जी हाँ
0: जेड़ा
1: जी
0: मूली आलू खांदा
1: सुनिया।
0: होगा ना पक्का इस प्लैनेट दा नहीं होगा। मैं थानू दसता कुलदीप जी नाल ही भज जी हो।
1: हाँ जी हाँ
0: हाँ जी हाँ
1: जी
0: जी, चलो कुलदीप जी अपनी आज फरमाइश दसो अज दी सोहनी जी।
1: हाँ जी सर जी, थोड़े ना गल करके बहुत खुशी हुई।
0: अरे वधिया
1: गाना
0: गल है
1: गाना
0: तुसी।
1: सुनना जी आप, बादल मूवी का गाने दे बोल आज जुगनी जुगनी।
0: ए माड़ा सुर ला के तो सुना दो, फिर
1: हाँ जी
0: सुर ला के सुनाओ माड़ा जा, लाइन सुना दो, मेन लाइन है इहदी।
1: यारी हां ते मुंडे गल लाउणी तो जे आ जोर लगदा ओ
0: जुगनी
1: जुगनी
0: जुगनी।
1: जुगनी जुगनी जुगनी।
0: आए चलो ठीक है जी, कुलदीप जी ताड़ी फरमाइश होनी पूरी कर देंगे जी। धन्यवाद धन्यवाद
1: धन्यवाद सर, ओके।
0: सर, बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय। वो कुलदीप जी ने बड़ा सोहना गाना दसा जी, जुगनी जुगनी। बड़ी देर बाद असं भी सुनने लगे थे, तुम भी सुनो दोस्तों, बहुत ही सोहना गाना है।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हाँ
1: क्या नाम है आपका? की
0: जी,
1: नाम है थोड़ा जी?
0: हेलो।
1: हाँ जी, की नाम है थोड़ा?
0: नाम है जी नितेश।
1: नितेश।
0: हाँ जी,
1: अच्छा जी, नितेश। नाइस, नितेश नेम जी। कितो बोल दे सर?
0: असि टुकड़ा नगर तो बोल रहे हैं जी, जलंधर तो जी। हाँ
1: अच्छा, जलंधर से बोल रहे हो। ठीक है जी।
0: जी,
1: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
0: हाँ जी, थैंक यू सर।
1: ओके जी, क्या कर रहे थे सर आप अब?
0: अभी अब हमारा जो है ना जी ग्रैंडसन,
1: हाँ,
0: उसके साथ थोड़ी मस्ती हो रही थी
1: अच्छा
0: सर।
1: जी, किस टाइप की मस्ती हो रही थी?
0: मैं यही गाने वगैरह ये
1: अच्छा,
0: सुनाता है
1: गाने।
0: हमें।
1: ठीक है
0: हाँ
1: जी।
0: जी, स्कूल का
1: ओके,
0: बताता रहता है।
1: अच्छा, ठीक है। सर, आपको पता है ना, आज पोटैटो डे, आज आलू दिवस है। तो
0: जी।
1: क्या आपने मनाया? फिर खाया कुछ आलू की तरह?
0: हाँ जी,
1: क्या खाया?
0: आलू का तो बहुत कुछ बनता है जी, पैटी वगैरह बन जाती है और टिक्की वगैरह बनाते हैं, बच्चे
1: हाँ
0: खाते हैं, और फ्रेंच फ्राई बनाते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी, हाँ जी,
0: आलू की तो काफी आइटम बन जाती है
1: काफी
0: जी
1: आइटम बन
0: घर
1: जाती है।
0: में। हाँ जी, हाँ जी,
1: आपकी कौन सी फेवरेट है
0: और
1: सर?
0: हाँ जी,
1: आपकी कौन सी फेवरेट है?
0: हमारी तो आलू टिक्की वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छी है जी।
1: अच्छा जी।
0: बाकी ये जो फ्रेंच फ्राई है ये भी बहुत खाते हैं
1: खाते
0: बच्चे।
1: हैं। आपने बोला
0: और हाँ जी,
1: कि हमारी आलू टिक्की बड़ी फेमस है,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: आपकी कहाँ, आपकी है मतलब जी, आपके लगी हुई है कहीं पर?
0: हाँ जी,
1: आपके कहीं लगी
0: हाँ
1: हुई है आलू टिक्की? आपने कहा हमारे यहाँ आलू
0: नहीं
1: टिक्की बड़ी
0: नहीं
1: फेमस है।
0: लगी नहीं है, घर में सब पसंद
1: अच्छा,
0: पसंद करते हैं।
1: ठीक है ठीक है,
0: हाँ
1: पसंद
0: जी
1: करते हैं। ओके,
0: जी
1: कभी ऐसा हुआ
0: हाँ
1: दिल
0: जी
1: करा सर आपको कि नितेश जी की आलू इतना पसंद आया, उसको आई लव यू बोल दो, आई लव यू आलू, ऐसा कभी हुआ?
0: आई लव यू तो कहना ही पड़ता है सर, क्योंकि
1: आए,
0: उसके बिना तो कोई जीवन में सब्जी बनती नहीं है।
1: अच्छा
0: आपको
1: जी।
0: मालूम ही है,
1: और मैडम जी,
0: पालक आलू खाते हैं, पालक आलू बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं सर। गाजर आलू है, गोभी आलू है,
1: और
0: बहुत आइटम बनती है सर।
1: साथ साथ वाले आपके बोलते नहीं कि आलू को आई लव यू बोल रहे हो, हम कहाँ गए फिर?
0: वो तो है ही है, वो तो वाइफ बनाती है तो वो
1: हाँ
0: बच्चे सब खुश से खाते हैं,
1: हाँ पर आप
0: उनको
1: भी जवाब
0: आइटमें
1: देते
0: बहुत
1: होंगे
0: आती है।
1: ना, घर वाले कहते होंगे
0: हाँ
1: आलू
0: जी,
1: आएगा और चला जाएगा, आप तो फिर कहेंगे फिर भाई आ जाएगा, क्योंकि आलू खत्म नहीं होने वाले इस दुनिया में, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: हाँ जी,
0: आलू
1: हाँ जी,
0: कभी नए नए आलू आ जाते हैं,
1: हाँ
0: कभी
1: जी
0: पुराने आलू चलते हैं,
1: जी
0: कई तरह के आलू ऐसे ही हैं। हाँ
1: ठीक
0: जी,
1: है जी। अच्छा
0: हाँ जी,
1: जी,
0: हाँ जी,
1: चलो बढ़िया है सर। सर, आज की फरमाइश क्या है आपकी गाने की?
0: हमारी फरमाइश है जी, हमारे ग्रैंडसन की दोस्त पिक्चर की है,
1: अच्छा जी,
0: गाड़ी आ रही। हाँ जी, गाड़ी बुला रही है,
1: गाड़ी
0: सिटी
1: बुला रही।
0: बुला रही।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी,
1: ये बताइए,
0: हाँ
1: गाड़ी
0: जी,
1: क्यों बुलाती है? हमको तो इंसान बुलाते हैं, आपको गाड़ी कैसे बुला रही है?
0: गाड़ी जब चलने वाली होती है सर तो सीटी मारती है,
1: ऐसी
0: अपने
1: आवाज आती है ना?
0: आप भागते हैं लोग गाड़ी
1: अच्छा,
0: में चलने के लिए। हाँ जी,
1: ओ
0: घूमने के लिए जाती है, आपको
1: ओ,
0: घुमा लाते हैं गाड़ी
1: ये तो है, ये तो है।
0: का।
1: ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ
0: थैंक
1: बात
0: यू
1: करके
0: थैंक यू
1: नितेश
0: सर,
1: जी, थैंक यू सो
0: थैंक यू।
1: मच। वाल, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सीटी तुसी दोस्तों खुद बजाइयो करे, फिलहाल ऐसी गाड़ी बुला लगी है।

0: वेल दोस्तों, आई होप कि तुसी ना जिहड़ी आ सीटी बजा लेती होगी, क्योंकि सीटी मारनी वैसे ना कई वाली बहुत सौखी होंगी, कई वाली ना बड़ी औखी होंगी। कहने का मतलब जिहड़े सिकरे होंगे ना, उन्हां दी शेप ना पाउट वर्गी बन जाती। आई नो अजकल दे यंगस्टर नूं पाउट पता होगा, जिहड़े तेरे घर दे नाल दे पुछदे होगे ना कि पाउट की होंदा, अपने घर दे नाल दे नूं समझा दो प्लीज। वैल आपां सरोतियां नाल गलबात करदे। हैलो जी।
1: हैलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, नमस्कार, की हाल चाल जी?
1: बहुत बढ़िया जी, मैं राम रोया शर्मा, पिंड समराए, जिला जलंधर तो बोल रहा जी।
0: ठीक है जी, राम रोया जी, पिंड कित समराए तो बोलते हैं जी।
1: हाँ हाँ जी, पिंड समराए, जिला जलंधर तो बोल रहा जी।
0: ठीक है जी, वधिया गल है सर, तुसी उत्थों बोलदे जी।
1: हाँ जी हाँ जी महाराज, तुसी हरेक वारी बहुत रौनक लाने, बहुत बढ़िया
0: गुस्से जिन्ना होंगे ना, असि ना किसी मतलब कह दें गुस्से च आलू वर्गा लगता। तू यह गल सच है कि आलू वर्गे लगते होंगे बंदे?
1: राम
0: लुभाया जी, ते तुहानू किन्ने कु पसंद आलू?
1: आलू बहुत पसंद है जी, वधिया आलू तो बगैर कोई सब्जी बनती नहीं जी। आलू गाजना, आलू बैंगन, आलू मटर, बहुत सब्जियां आलू दे नाल ही बनदियां
0: जी। ते आलू भिंडी बन जांदी? राम लुभाया जी,
1: जे बनाउणी होवे तां बना सकदे पर
0: मैं कहिंदा जी ट्राई करन ते की जांदा।
1: इहदा मेल नहीं है जी कोई।
0: इह तां है जी, ओह मेल है, फीमेल है, है ना जी।
1: आलू नहीं भिंडी, आलू भिंडी नहीं बनदी जी।
0: हां जी हां जी, ते कहिंदे ने अजे आलू भिंडी बनूगी तां फिर ना जनरेशन ना फिर कोई नवी सब्जी पैदा कर दूगी, इसलिए मतलब इदां ही ठीक है। आलू मटर सही है, आलू गाजरा ठीक है,
1: आलू मटर ठीक है जी, आलू बैंगन, आलू मटर जो बहुत सब्जी आलू दे मर्दी
0: जी। ए तां है जी, वैसे मैं तुहानूं दसां, इह तां मैं तुहानूं दसां जी, राम लुभाया जी तां पंगे लिते गए आ कि आलू ना गाजरा पातियां जी, आलू ना मटर पाते, तुहानूं लगदा सी इहदी सब्जियां बन सकदियां ही?
1: याद कर लिया जी, मनुख लोड़ की कार की मां होंगी है जी, लोड़ जी अपने कार की मां है, फिर लोड़ जो हुई लोग सारे आप कार नाल चल गई। गाजरा पा लिया, आलू ना बैंगन पा लिया, आलू ना मटर पा लिया,
0: समोसा मंग रहा, देखो सुनो जी।
1: बिलकुल जी, कोई नी, समोसा दे नहीं।

0: आज का मौसम देखो कितना सुहाना हो गया है, बारिश हवा चल रही है ना, गर्मी तो कितनी राहत मिली है आज।
1: बिल्कुल खुशी, देखो सानू तां राहत मिली है, नाल ही नाल जिहड़े साडे बेजुबान दोस्त ने, जानवर ने साडे घर दे आले दुआले, उहनां नूं वी मैनूं लगदा जरूर राहत मिली होनी, क्योंकि इन्नी ज़्यादा गर्मी पै रही सी ना पिछले दिनों तों कि बाहर जदों निकलदे सी इदां लगदा सी साह बहुत ज़्यादा भारी हो गया। तां मैनूं लगदा अज साडी रब ने सुन लई, ते अज जिहड़ा मौसम है खासकर वीकेंड दा यानी कि सैटरडे संडे दा जिहड़ा मौसम है काफ़ी ज़्यादा ठंडा करता है।
0: बिल्कुल शिक्षित, ते सब तो पहला वेरवा दे दिने अपने युवा दोस्तों नू, अपने लिसनर्स नू, कि सब तो पहला तुसी सुनोगे वर्ड एक्सप्रेस।

0: कर वीकेंड का यानी कि सैटरडे संडे का जो मौसम है काफी ज्यादा ठंडा करता है।
1: बिल्कुल शिक्षित ते सब तो पहला वेरवा दे दिने अपने युवा दोस्तां नू अपने लिसनर्स नू कि सब तो पहला तुसी सुनोगे वर्ड एक्सप्रेस विच असी एक खूबसूरत पंजाबी वर्ड तुहाडे नाल शेयर करांगे उस तो बाद दिमागी दंगल होएगा जिस दे विच असी तुहानू पुजारता पुछांगे ते तुसी सानू आंसर देना है 0181 23 44 174 ते या फिर फेसबुक मैसेंजर ते आकाशवाणी जलंधर नू तुसी ओपन करना है फेसबुक मैसेंजर ते जाके तुसी आंसर देना है ते उस तो बाद एक आखिरी सैगमेंट होएगा जिहड़ा होएगा ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ।
0: अच्छा तो खुशी असी अज गल कर रहे थे कि मौसम के बारे तो अज देखो मीह का मौसम है तो मैं जरूर यकीन है कि कई साढ़े स्रोते इस वक्त अपने घर के शाम का नज़ारा ले रहे हैं साडा प्रोग्राम युवाणी सुन रहे तो मैं लगता आलू प्याज के पकौड़े भी जरूर बन रहे हो।
1: बिल्कुल शिक्षित कई चीज़ा ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ा होंदियाँ कि सारे नाल मिक्स हो जाएं ने तो उन्होंने कोई गल भी नहीं करता इंपोर्टेंस उन्होंने देंदे नहीं बट वो बहुत इंपोर्टेंट होंदियाँ ने।
0: बिल्कुल खुशी तो इदा ही सब्जियां दे विच दोस्तों असी गल करिए तो अज असी गल करते हैं आलू दे बारे। दोस्तों असी जानते हैं कोई भी सब्जी दे विच असी आलू पा दिए चाहे वह आलू शिमला मिर्च होवे आलू मटर होन आलू पनीर होन या फिर असी पुलाओ दे विच भी जो आलू पाने तो उसका जिहड़ा स्वाद है काफ़ी ज़्यादा एक तो चलो स्वाद वध जांदा ते नाल ही नाल उसकी जी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वह भी वध जांदी है।
1: बिल्कुल दोस्तों पंजाबियों के चेहरे तो आलू सुन के ही मुस्कान आ जाती है क्योंकि ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 7,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੋਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ।
0: तो दोस्तों जेकर अपने भारत अपने देश की गल करिए इस दे देश दे विच आलू जेड़े सी ओ पुर्तगाली लाए सन 1600 ईस्वी दे विच।
1: बिल्कुल जे गल करिए इस दे न्यूट्रिशन दी तां आलू विच विटामिन सी पोटाशियम ते फाइबर हुंदा है ते दुनिया भर विच हजारां किस्मां दे आलू हुंदे ने कईआं दे तां नाम भी नहीं पता पर असीं सब्जी विच यूज़ करदे हां हर सब्जी विच आलू पैंदा है जिवें कि शिक्षित ने दस्सिया आलू गोभी होवे आलू मटर होवे या आलू पनीर होवे आलू दी जिहड़ी इंपोर्टेंस है ना उह कदे नहीं घटदी उह दूसरी सब्जी नाल रल ही जांदा है।
0: तो बिल्कुल जेकर इस दे दोस्तों इंपोर्टेंस की गल करिए खुशी तो असी भी अपने सुभाअ दे विच जेकर आलू की तस्वीर लईए यानी कि जेकर असी अपने मन मिटाव जिहड़े ने उह मिटा के अपने दोस्तों नाल अपने मित्रां दे नाल गल करिए ते होर वधिया तरीके नाल जेकर असी उन्हां दे नाल रल सकीए तो मैनूं लगता है इस तों वधिया चंगी चीज़ की हो सकती है।
1: बिल्कुल ते अज दिन किसानां नूं भी याद करना चाहिए जिन्हां ने आलू की फसल उगाई है तो साड़ी थाली तक हर थाली तक उस सब्जी नू उस खाण पीन की जिहड़ी चीज़ है उन्होंने पहुँचाया है तो सारियां दा ढिड भरिया है किसानां नू भी जरूर याद करना चाहिए तो आलू के महत्व नू भी भुलना नहीं चाहिए छोटी छोटी चीज़ा जो साड़ी जिंदगी विच अहम रोल अदा कर दी ने उन्हां दी इंपोर्टेंस नू समझना बहुत जरूरी है।
0: तो फिलहाल दोस्तों गल्लां बातें इदां ही जारी रहणगियां थोड़े अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी दे विच तां फिलहाल सुनते हैं एक सोहना जिहा गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, एफएमएडिक्स 2.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जलंधर प्रोग्राम चल रहा युवाणी ते सेगमेंट तुसी एंजॉय कर रहे हो वखरा स्वैग मेरे आरजे नेहा दे नाल। ते दोस्तों तुहानूं पता है जिवें कि साडे नाल जुड़े ने अज साडे स्टूडियो विच मेकअप आर्टिस्ट मुकेश, जिन्हां ने सानूं बहुत सारियां मेकअप दियां टिप्स दित्तियां ने ते सानूं हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करन दियां भी टिप्स दित्तियां ने। ते दोस्तों हुण उहनां तों इह वी पुछ लैंदे आ कि जदों उहनां ने अपनी जर्नी स्टार्ट कीती ते उहनां दी जिहड़ी इंस्पिरेशन सीगी उह कौण सी, उहनां ने इंस्पिरेशन कित्थों लई अपनी जर्नी दी।
1: मैं पहला जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं स्टार्टिंग तो करदा आ रहा सीगा मेकअप, ते उस तो बाद जिदा सोशल मीडिया तो भी काफ़ी कुछ देखदा हुंदा सी, यूट्यूब तो, इंस्टाग्राम तो, फेसबुक तो, मतलब जिदा आर्टिस्ट मेकअप करदे हुंदे सी। फिर मैनूं भी हुंदा सी कि हाँ जो उन्होंने क्रिएट किया मैं भी वो किसी परसन ते क्रिएट करके देखा। उस तो बाद फिर इदां ही मैं अपनी अकैडमी ज्वाइन की, उत्थों मैं काफ़ी कुछ सीखा मेकअप लई। उस तो बाद जो मैं जॉब ज्वाइन की सी उहदे विच जिहड़े जसमीत सर, मनदीप मैम ने जो भी मेरियां गलतियां सीगियां काफ़ी कुछ उन्होंने भी इंप्रूवमेंट लियांदी, मतलब उन्होंने मैनू काफ़ी गाइड किया कि जो भी मेरिया माइनर तो माइनर मिसटेक्स भी होंदियां सीगियां, तो मतलब मेकअप नू लैके कि स्किन ते कड़ा मेकअप करना चाहिदा या कह लो शेप दे अकॉर्डिंग कड़ा मेकअप हुंदा, वो सारा कुछ मैनू मैम ने दस्या सीगा। उत्थे
0: मेकअप इंडस्ट्री विच कॉम्पीटिशन भी काफ़ी वध गया होया है इस टाइम ते, एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनने लई टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है या फिर प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है, तुहानू की लगता है?
1: एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनने लई टैलेंट भी जरूरी आ ते प्रैक्टिस भी उन्नी ही जरूरी आ। जिदा हुण मान लो कोई परसन आ थोड़ा सीख के जे तो वो टैलेंटड आ उन्हें होर ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता, वो अपनी आर्ट या जो भी अपने दिमाग ना होर कुछ ऐड ऑन करके उन्होंने होर भी ज़्यादा क्रिएटिव कर सकता। इद्दी प्रैक्टिस भी उन्नी ही ज़्यादा जरूरी है, जिनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो काम में उन्नी ज़्यादा तेरे हाथ में सफाई आऊगी। ओबियसली जे तेरे हाथ से सफाई होगी तो अजकल जो क्लाइंट्स आ ज़्यादातर हाथ में सफाई देखते हैं कि हाथ से कितनी सफाई आ, पैसे नालों ज़्यादा अजकल मतलब जो भी तेरा टैलेंट ते जो भी प्रैक्टिस आ वो मैटर करता।
0: तो मुकेश मेरा आखिरी सवाल तेरे तो यह है कि जिहड़े साडे यंगस्टर्स मेकअप इंडस्ट्री विच करियर बनाना चाहुंदे ने उहनां लई तुहाडी की एडवाइस है?
1: जिहड़े भी नवें नवें यंगस्टर्स अपने मेकअप इंडस्ट्री विच जुड़ रहे आ उहनां नूं मेरी तो यही एडवाइस आ कि जे तुहानूं अपने घर वल्लों प्रॉपर सपोर्ट हैगी है ना तो अपने काम विच मतलब डटे रहो, प्रॉपर अपने काम नूं परफेक्ट करो, अपने हाथ विच सफाई लियाओ, प्रॉपर मतलब इंटरस्ट दे नाल अपना काम करो। जे जो तुहाडे काम विच परफेक्शन आ गई तो फिर ओबियसली सारे ने कहना कि हाँ बहुत वधिया गल आ। पहला सारे ही टोंटी मारते होंगे कि आ किहड़े काम च पै गए, इदा आउंदा ये है वो है, कुड़ियां वाला काम आ, मुंडियां नूं मोस्टली तां ही सुनना पैंदा कुड़ियां वाला काम आ, मेकअप कुड़ियां लई चीज़ आ, मुंडे नहीं कर सकते। बट जदों आपां एक सक्सैसफुल हो जांदे ना इस चीज़ विच फिर ओबियसली सारिआं ने ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ।
0: ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਟਰਗਲ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਬਿਲੀਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੋ।

हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा सफर है जो सानू कहते ना रोज कुछ ना कुछ सिखा जाती है। वेल, गल करन जा रहे हैं साडे हुन प्यारे शो लव यू जिंदगी बारे। वेल वेल वेल दोस्तों, तुसी सारे ने अपनी जिंदगी में एक टाइम इधर आया होगा जिसनों तुम प्यार तो बहुत किया होगा। क्यों सोचे कभी इस बारे? वेल, जो सानू जिंदगी बारे पता लगा ही ना कि हाँ यार, जिंदगी प्यार करना, वाह इतना क्या बात है, नवी चीज़ सानू सुनने को मिली सी उदो। वैल दोस्तों, कहते ना कि जिंदगी हमेशा साड़ी मर्जी मुताबिक नहीं चलती, पर यह जरूर साड़ी सोच के मुताबिक सोहनी बन सकती है। कई बार असी छोटिया गल्लां विच उलझ के वड्डी खुशी गवा लैंदे हाँ, तो कई बार एक छोटी मुस्कान सारा दिन सोहना कर देंदी है। लव यू जिंदगी सानू यह याद दिलाता है कि खुश रहना, जेडे खुश रहने लिए ना वड्डे कारण नहीं सही नज़रिया चाहिए है। इशून वाली है जो हार के भी मुस्कुरा जानते हैं, जो टुट के भी अपने आप को जोड़ लेंगे, उन्होंने जो अज थके हुए ने पर कल तो फिर उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिंदगी का सब तो वड्डा हुनर यही है कि हर हालात विच अपने आप को अपने नाल खड़ा रहना। जिंदगी पूरन नहीं होंदी दोस्तों, पर हर दिन सानू पूरा बनन का मौका जरूर दिंदी है। कदे चाह दी कचुस्की विच सुकून मिल जाता है, कदे किसे अपने दी आवाज़ विच, कदे पुराना गीत दिल नूं छू लैंदा है, ते कदे खामोशी सब कुछ कह जाती है। दोस्तों प्रोग्राम लव यू जिंदगी स्टार्ट हो चुका है। वैल, अज असी गल बात करांगे असी की चाहते हैं, कहने का मतलब जिन्हों कहते ना चाहत, वॉन्ट, इंग्लिश कहने आई वॉन्ट। अज आप उस बारे गलबात करांगे कि असी जेकर एक बार अपने आप नूं चालिए कि असी की करना चाहते हो, दैन तो उस चीज़ नूं किन्ना कसी पाण ली अपने आप नूं उहदे विच डुब जांदे हां उस चीज़ च ना, तो किवें लगता है कि जदों जिहड़ी चीज़ नूं असी बहुत दिलों चाहिए तो वह पूरी हो जाए तो की हुंदा है। वैल दोस्तों, सुणदे इस गाने तों बाद इस चीज़ नूं कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों।

दोस्तों तो सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी, जिंदा की दोस्तों से गल की असं अज गल करांगे चाहत बारे। दोस्तों मनुखी जिंदगी दा जड़ा इंजन है ना वह चाहत है। अंग्रेजी दा वांट, पंजाबी दी चाहत, ख्वाहिश, तांग, ये शब्द जिन्ना छोटा है उन्ना ही गहरा भी है। दर्शन शास्त्र विच चाहत नू भी मनुख होण दा सबूत मन्या गया है। जदों चाहत खत्म तो जिंदगी भी ठहर जाती है। आओ इस शब्द नू थोड़ा होर आपां डूंगे विचार करिए देते कि चाहत की परिभाषा की है। सब तो पहला आपां गल करदे कि जिहड़े दर्शन विच वांट दा मतलब है कि हुण जो है उहदे तो वध दी लोड़ महसूस करना। प्लेटो कहिंदा सी कि इच्छा उदों ही पैदा हुंदी है जदों सानू किसी चीज़ की घाट महसूस हुंदी है। उदाहरण वजों कि गर्मी विच पानी की चाहत, रात नू हनेरे विच रोशनी की चाहत, चाहत बिना घाट नहीं ते घाट बिना तरक्की नहीं। पर सवाल यह दोस्तों कि घाट असली है जा मन दी बनाई हुई है। बुद्ध धर्म कहिंदा है कि तनवा तनहा भाव तृष्णा ही सारे दुखा दी जड़ है। असी दुखी इसलिए ही हाँ क्योंकि होर चाहते हाँ, असी होर चाहते हाँ। चाहत दियाँ जिहड़ियां किस्मां होंदियां है कि लाइक दोस्तों दार्शिक तौर पर चाहत ना चार वर्गों में वंडिया जा सकता है कि पहला है कि शरीरक चाहत यानी कि बायोलॉजिकल वॉन्ट, भुख प्यास नींद यह कुदरती ने, यह चाहतान ना होण दा मनुख ज्यों नहीं सकता। शिव कुमार बटालवी ने लिखा है कि रोटी तो मिल गई पर चाह तेरे हाथ की ही नहीं मिली। इत्थे भुख की चाहत पूरी हो गई पर भावनात्मक चाहत बाकी रह गई। दूजी गल है मानसिक भावनात्मक चाहत यानी कि साइकोलॉजी वॉन्ट, मान सतिकार प्यार सुरक्षा मैसलो दे यानी कि विच यह दूजे पड़ाव विच आउंदी है कि उदाहरण है कि एक विद्यार्थी नू नंबर नहीं शाबाश दी चाहत हुंदी है, एक मां नू पैसा नहीं धी दे एक फोन दी चाहत हुंदी है। दूसरी गल है समाजिक चाहत दोस्तों जिन्हें कि सोशल वॉन्ट, ना दर्जा प्रसिद्धि लोग की कहणगे यह चाहत समाज पैदा कर दी है। उदाहरण करते हैं कि पिंड विच ट्रैक्टर नवा लैन की चाहत अक्सर इसलिए होंदी है क्योंकि गुआंढी ने नवा लिया है। नीशे इस नू रेजिमेंट कहिंदा है, दूजियां नू वेख के चाहत पैदा होना। अगला है कि आत्मिक यानी कि मैटाफिजिकल चाहत यानी कि स्पिरिचुअल वॉन्ट, रब नू मिलन की चाहत, मोक्ष की चाहत, मैं कौन हाँ जानने की चाहत। सूफी इसनों इश्क दे हकीकी कहते हैं। उदाहरण वालों बुले शाह की चाहत, रब दसदा कुठे वसदा खोजी लब्बे तो कुछ पले पैंदा, रब दसदा कुठे वसदा खोजी लब्बे तो कुछ पले पैंदा। यह चाहत सारिया चाहतों तो उपर है दोस्तों। पर दोस्तों जिहड़ा चाहत का द्वंद है ना जिवें कि मोटिवेशन जां दुख, चाहत जिहड़ी दो तारी तलवार है। पहली है कि तरक्की का जिहड़ी मोटर चाहत, तरक्की का मोटर यानी कि न्यूटन नूं सेब डिगण की जिहड़ी वजह जानण की चाहत सी तां गुरुताकर्षण का नियम बन गया। एडिशन नूं रात नूं रोशनी की जिहड़ी चाहत सी, एडिसन नूं रात नूं रोशनी की चाहत सी तां बिजली का बल्ब बन गया। पंजाबी मुहावरा चाहवान बंदे दे मुकद्दर जागदे ने। दूजी चाहत होंदी है दोस्तों कि दुख का कारण। गौतम बुद्ध का पहला सच है कि सर्वम दुखम भाव सब दुख है क्योंकि सब चाहत है। जो चीज़ असी चाहते हाँ वह मिलन ते खुशी दो दिन दी है, ना मिलन ते दुख उम्र भरदा है। उदाहरण वजो दोस्तों मैं चाहता हाँ कि ओह मैनू प्यार करे, जे करे तो चाहत होर वध जांदी है, ना करे तो दिल टुट जाता है। चाहत ने ही गुरप्रीत नूं जसमीन की चिट्ठी लिखन ते मजबूर किया सी, ते उही चाहत उहदा दर्द भी बन गई सी। हाँ

दोस्तों तो इस प्रोग्राम लव यू जिंदगी दोस्तों आज चाहत ते गल हो रही सी चाहत बारे आप आज डीप अपना डिस्कशन कर रहे थे हुन आप गल करते हैं चाहत ते लोड़ विच फर्क की हुंदा है यानी कि नीड वर्सिज वॉन्ट। दर्शन की सब तो जरूरी गल है कि लोड़ ते चाहत नू अलग करो। लोड़ यानी कि नीड हुंदी साडी रोटी कपड़ा मकान यह सीमित ने। चाहत हुंदी है पांच मंजिला मकान दस जोड़े कपड़े रोज़ नवी डिश यह असीमित ने। दोस्तों उपनिषद कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी जिहड़ा बंदा लोड़ ते चाहत का फर्क समझ लवे ना वह 90% दुखा तो बच जाता है। उदाहरण वजो एक किसान कोल पांच किले ने लोड़ मुताबिक उहदे घर दा जिहड़ा गुजारा है वह चल जाता है। पर चाहत उन्हूं कहती है कि गुआंढी दे 10 किले ने मैं भी लेने ने बस इतों करजा टेंशन नींद खत्म। उस तो बाद आती है चाहत नूं काबू करन दी कला यानी कि दार्शनिक हल। चाहत नूं खत्म नहीं किया जा सकता दोस्तों ना ही करनी चाहिए। करना यह है कि चाहत नूं सियाणी बनाया जाए। हल यह है कि स्टोइक दर्शन यानी कंट्रोल वाली चीज़ चाहो यानी कि स्टोइक कहते हैं कि ओही चाहो जो थोड़े हाथ है।

नतीजा थोड़े हाथ नहीं, मेहनत थोड़े हाथ है। तो चाहत यह रखो कि मैं पूरी मेहनत करांगा, ना कि मैं 100% नंबर लावांगा। दूजी गल है कि सूफी दर्शन चाहत नूं रब वल जिहड़ा आपां वल मोड़ दिओ। कहिंदा भावे कि बुल्ले शाह कहिंदे ने कि जे चाहना ही है तां यार नूं चाहो। दुनियावी चीज़ां दी चाहत खत्म हो जावे, बाकी सिर्फ एक चाहत रह जावे, अपने आप नूं रब नूं पछाणन दी, अपने आप नूं रब नूं पछाणन दी। दोस्तों चाहत तो बिना कहिंदे ना मनुख भी नहीं है, जिवें कि चाहत ना सराप भी है वरदान भी है। जे चाहत ना होवे तां बच्चा तुरना ना सीखे, कलाकार तस्वीर ना बनावे, इनकलाबी आवाज़ ना चुके, पर जे चाहत बेलगाम हो जावे तां मनुखी जानवर बन जांदा है। सिर्फ खाण पीण ते हासिल करन दी दौड़ विच पंजाबी दा एक शेर है कि चावन रही पर लालची ना बन, यानी कि चाहत रुख उडारी दी पर आसमान नूं वेचण दी कोशिश ना कर। दोस्तों इसलिए ना चाहत जिहड़ी हुंदी ना, इसलिए एक सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं हुंदी चाहत दी। असीं ना बहुत ज़्यादा जदों मसलियां च फस जांदे आ, सानू ना हल नहीं पता हुंदा बहुत सारियां चीज़ां दा, जिवें कि पर उहदे विचों ओवरऑल एक चीज़ आती है कि सानू अपने आप ते कंट्रोल रखना पैंदा दोस्तों, जिहदे करके असीं अपने आप नूं संभाल सकीए। ते जिवें कि गल कीती कि 90% ना दुख ही खत्म हो जाते जो असीं चाहत नूं समझ लैंदे आ असल विच सानू किहदे विच ज़्यादा जोर देना चाहिए किहदे विच नहीं देना चाहिए। दोस्तों वैल दोस्तों प्रोग्राम चल रहा लव यू जिंदगी, तो सुन रहे एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स। तो दोस्तों हुण विला हो चुका है प्रादेशिक खबरां दा, जो कि 6:20 ते प्रसारित हो गया। तो दोस्तों उस तो बाद असी इस चाहत नूं ना होर गलबात करांगे, इहदी कोई कहानी जरूर सुणांगे, तुहानूं सुणाऊंगा जरूर दोस्तों। वैल हुण जिहड़ा वेला हो चुका है प्रादेशिक खबरां दा, ते कुछ ही समय च तुसीं सुणोगे प्रादेशिक खबरां।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दी खास खबरां। पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में ठेके से काम करने वाले 65,000 तो वध मुलाजमान नियमित करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब विच वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR अधीन वोटर सूचियां के प्रकाशन संबंधी समा सारणी विच सोध की है। खरड़ा वोटर सूचियां 31 जुलाई की थां हुण 3 अगस्त नूं प्रकाशित कीतियां जाणगियां। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने अज अमृतसर का दौरा किया ते सीनियर अधिकारियों नाल अमन कानून की हालत का जायजा लिया। पंजाब ते हरियाणा के बहुते हिस्सों में अज सवेरे गरज चमक नाल मीह पैण कारण लोगों को गर्मी तो कुछ राहत मिली है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में ठेके से काम करने वाले 65,000 तो वध कर्मचारियों नियमित करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और पेंशन नाल संबंधित बकाए के हल लई मंत्रिमंडल के पैनल का भी पुनर्गठन किया है। भ्रष्टाचार के मामलों की तेजी नाल सुनवाई लई 7 विशेष अदालतों की स्थापना भी मंजूरी दी गई है। एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान फैसलों के वेरवे सांझे करदे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब राज आउटसोर्सड परसनल कंट्रैक्चुअल इंगेजमेंट विच तब्दीली बारे बिल 2026 तहत आउटसोर्सड ग्रुप सी ते ग्रुप डी कर्मचारियों जिन्होंने 5 साल की लगातार सेवा पूरी की है नूं सीधे तौर पर सरकारी कंट्रैक्चुअल रोजगार अधीन लिया जाएगा।
3: अज कैबिनेट दे विच ये पास हो गया, ऑर्डिनेंस जिहड़ा गवर्नर साहब नूं भेजांगे, उस तों बाद बिल दे रूप दे विच ये विधानसभा च आ जाऊगा। इहदे विच

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते मैं थड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों कुल्लड़ वाला चाह वे चनला छोटी चाहत वड्डा सुपना अज गल कर रही चाहत ते। आओ दोस्तों थानू एक कहानी सुनाने हैं। गुजरात एक पिंड विच प्रूफल बिलोरे नाम दा मुंडा सी। 2016 विच MBA करके अहमदाबाद की एक वड्डी कंपनी विच 15,000 की नौकरी करता सी। लोग कहिंदे कि लाइफ सैट आ, पर प्रूफल की चाहत ना कुछ होर ही सी। और रोज़ ऑफिस के बाहर कुल्लड़ विच चाह पींदा सी। एक दिन उन्हें सोचा कि मैं चाहता हाँ कि लोग प्लास्टिक कप छड़ के ना कुल्लड़ विच चाह पीन, वातावरण बचे ते कुम्हारा नू काम मिले। दोस्तों

0: दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों, गाना तो बड़ा सोना है कि उमरा च की रखा है। वेल ना इसलिए ना सोच लेना चाहिए कि जो दिल करता सोचो, तो जो दिल करता करो यार, कोई नहीं थानू रोकता। दोस्तों मजे करो, जिंदगी एक है दोस्तों। ऐसी जिंदगी के नाल एक याद है, एक आप गल कर रहे थे कि अपन चाहत बारे एक और प्यारी जी स्टोरी, एक वधिया जी कैंड जी स्टोरी सर दोस्तों तुम सुनाना कि अपाहज अध्यापक ते चाहत ने असमर्था हरा दिती। पंजाब दे मोगा जिले विच बलजीत कौर 8 साल की उम्रे पोलियो कारण ना लत्ता तो अपाहज हो गई। करदे ने कहा कि बेटा हुण तू कुछ नहीं बन सकती, पिंडा वाले ताने मार दे कि लंगड़ी किथे पड़ेगी। पर बलजीत की एक चाहत सी कि मैं चाहती हाँ कि मेरे वर्गे बच्चे पढ़ के अपने पैरों ते खड़े होन, मैं अध्यापका बनना चाहती हाँ। एक आत्मिक चाहत सी। वह किसड़ किसड़ के 3 किलोमीटर स्कूल जाती, लोग राह विच चुक के लै जाते। उन्हें 12वीं भी की, फिर बी एड भी सरकारी भर्तियों विच फेल हो गई क्योंकि फिजिकल फिट नहीं सी। पर चाहत दोस्तों, जो गल आ जाती ना दोस्तों चाहत ते की करिए उदा फिर। पर चाहत ने हार नहीं मननी, 21वीं बार भी वह पास हो गई ते अज वह सरकारी प्राइमरी स्कूल की हैडमास्टर है। और स्कूल का जिहड़ा रिजल्ट है 100% है। वह हर बच्चे नूं कहिंदी है कि मेरियां लत्तां नहीं चलदियां पर मेरे सुपने दौड़दे ने, तुहाडे पैर सलामत ने तां तुसीं क्यों रुके होए ने। देख सकते हो दोस्तों कितनी कमाल की गल है कि असी कितनी चीज़ों की कंप्लेंट्स करते रहने हैं, पर कहते ना जिन्हें करना होता वो कर ही लेंदा दोस्तों, क्यों मानते हो। पर दोस्तों सिक्ख्या यही दिंदी है कि शरीरक घाट चाहत की घाट नहीं बन सकती। जदों चाहत मजबूत होवे ना तो किस्मत भी रस्ता दे दिंदी है। यह मानसिक प्लस आत्मिक चाहत की जित सी दोस्तों, मानसिक प्लस आत्मिक चाहत की जीत सी दोस्तों।
1: लिसन, लाइफ द लेसन।

नमस्कार, शाम 7 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के 5 दिन दौरे ते आज बोधगया पहुंच गए ने। कर्नाटका के नवे मुख्यमंत्री की चोण करने लई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग आज बेंगलुरु विच। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय हथियारबंद सेनावां उच्च पदरी चौकसी ने ते अते लोड़ पैन उत्ते ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लई तैयार ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज फौजी सेवावां तो सेवा मुक्त हो गए ने। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि उन्हां दी थां लैणगे। भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब विच विशेष तिब्र सोध SIR अधीन वोटर सूचियां दे प्रकाशन संबंधी समा सारणी विच सोध कीता है। पंजाब बीजेपी दे नवे चुने गए प्रधान केवल सिंह ढिल्लो ने आम आदमी पार्टी दी सरकार उत्ते नगर निगम चोणां दौरान वड्डे पद्धर उत्ते धोखाधड़ी करन अते बेनियमियां दा इल्जाम लगाया है। पंजाब सरकार वालों सूबे के स्कूलों विच 1 जून तो 30 जून तक गर्मी दियां छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया है। अज देश भर विच हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली विच गर्म चमक नाल गड़ेमारी दी पेशीनगोई कीती है। इस दौरान पंजाब दे कई हिस्सों विच सवेरे हल्की तो दरमियानी बारिश नाल तापमान विच गिरावट दर्ज कीती गई है। महिला क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच अज शामी 7 बजे ब्रिस्टल

सिर चुकाया मगर अपने सुपने दे अगे, बेबसी दे अगे कदे नहीं। दोस्तों परेश रावल ने सिर मोहरा दिलवाले नाम शिवा वर्गियां अनगिनत फिल्मां कीतियां जिन्हां विच उन्हां ने पॉजिटिव ते नेगेटिव दोनों ही किरदार बाखूबी प्ले कीते। उन्हां दी मेहनत सदका ही उन्हां नूं बहुत सारे होर भी इनामां दे नाल नवाजिया गया, जिस विच गल करिए 2014 दी जदों उन्हां नूं पद्म श्री दे नाल सम्मानित किया गया। इस तों बाद 2018 दे विच महाराष्ट्र सरकार ने उन्हां नूं राज कपूर स्पैशल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड दे नाल भी सम्मान दिता। इस दे नाल ही नाल बहुत सारे नैशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स ते आईफा अवार्ड्स परेश रावल ने अपने नां कीते। दोस्तों 2000 तो बाद परेश रावल दी जिन्नी भी फिल्म आईयां वो फिल्मां दे विच उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किए, पॉजिटिव जिदे विच वो हसांदे भी लोटपोट भी करते सानू ते नाल ही नाल कुछ अजिहियां फिल्मां भी कीतियां जो सोचने लई मजबूर कर दिंदियां ने, जिवें कि गल करिए फिल्म आंखे, अवारा पागल दीवाना, हेरा फेरी, हंगामा, फिर हेरा फेरी, वेलकम वर्गियां फिल्मां दी जिस विच उन्होंने बाबू राव गणपत राव अपटे दे किरदार दे नाल खूब हसाया। ते जेकर गल करिए 2012 दी ओ माई गॉड फिल्म दी जिस विच उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल किया कि जिसनूं मूर्तियां विच लभदे हो ते कन कन विच समाया है। 2018 दे विच संजू वर्गा किरदार, संजू दे प्यो दा किरदार किया, एक समझदार जो अपने बेटे नूं सही रस्ते ते लियाण वास्ते बड़ी जद्दोजहद करदा है। या 2019 दी सर्जिकल स्ट्राइक ते बनी उरी फिल्म दा जिक्र करिए जिस विच उन्होंने एक भारती अफसर दी भूमिका निभाई है जो अपने देश दी हिफाजत वास्ते कुछ भी कर सकदा है। या 2024 दी सरफिरा फिल्म, या 2025 विच आई स्टोरी टेलर फिल्म दा जिक्र करिए। हर एक फिल्म बाकमाल है जो सिनेमा दा, सिनेमा विच उन्हां नूं एक खास मुकाम ते एक खास जगह दिंदी है। गल हो रही है परेश रावल दी ते हैप्पी वाला बर्थडे है जी अज उन्हां दा, ते परेश रावल जी दी गल कीती ते उन्हां दी ही एक मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म दा गीत सुनदे हां, क्योंकि आई होप तुहानू भी सारे नूं बहुत पसंद आएगा। ते लो जी फिर कैलाश खैर दी आवाज़ दे विच पेश है ए गीत, ते गीत तो बाद लैके आवांगे तुहाडे वास्ते फिल्मी दुनिया दी एक होर शख्सियत दी कहानी।

कदम रखिया ते एक बार फिर चर्चा शुरू हुई। फिर एक बार नवी पीढ़ी दी पसंद बनी, उन्होंने कुछ फेमस टेलीविजन किए जिन्हां विच उन्होंने यादगार किरदार निभाए। इस दे विच पहला नाम है 2010 तो बाद आए नाटक एक था राजा एक थी रानी। उस तो बाद छोटी सरदारनी नां दा नाटक जिस विच उन्होंने दमदार सरदारनी दा काम किया। दो बेटियां दी धी, दो तियां दी मां ते किस तरह तियां नूं पालदी है पोसदी है ते इस दे नाल ही नाल उन्हां नूं एक मजबूत फैसला लैण वाली एक समझदार शख्सियत बनांदी है। ते इस दे नाल ही नाल ये रिश्ता क्या कहलाता है वर्गे सीरियल्स यानी कि डेली सोप दे विच नजर आई। दोस्तों हुण गल करिए नीता राज जिन्होंने बहुत सारिया फिल्मां कीतियां, बहुत सारिया, ते इस दे नाल ही नाल इन्हां दी एक फिल्म दा बड़ा ही खूबसूरत गीत है। फिल्म दा नाम है जी नौकर बीवी का। ते इस फिल्म दा गीत तुहाडे वास्ते पेश करन जा रही हां ते उम्मीद करदी हां इस दा पूरा जड़ा है आनंद मानोगे।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निर्देशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हाँ जी, मैं कह जी हुन सारे ना तुसी तैयार हो जाओ क्योंकि हुन असी सिनेमा एक्सप्रेस दे विच बैठ के चलांगे उस दौर विच जदों मल्टीप्लेक्स

दोस्तों पंजाबी सिनेमा दी राजधानी पता है? जेकर सिनेमा दी गल करिए तां पंजाब दे विच सिनेमा दी राजधानी मन्नी जांदी सी लाहौर, जिवें भारत दी राजधानी सिनेमा दी राजधानी जिहड़ी है इस टाइम आपां मुंबई नूं कहिंदे आ, उस समय बहुत सारिया फिल्मा लेंदे पंजाब विच बनदियां सी। तो बहुत सारे बॉलीवुड के ओ नाम वो कलाकार जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, बॉलीवुड के बहुत सारा काम किया, असल उन्होंने शुरुआत जी है इस सिनेमा तो हुई।

हाँ जी, मैं कैसे यही सोच रहे ना कि प्रोग्राम बारे दास के कि नेटवानी प्रोग्राम का आगाज होन जा रहा है, पर दोस्त चली गई थी। वेलकम वेलकम वेलकम एफ एम एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर ते तुसी एफ एम रेनबो दिल से दिल तक ट्यून इन किया है अपने दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। मैं कह जी सारे ही दोस्तों का प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत प्यारा स्वागत है जी, निग्गर स्वागत है। मैं कह जी अज तो वैदर भी बड़ा शानदार होया पिया है, सवेर तो ठंडिया ठंडिया हवावां ने गर्म शहर दे विच रौनक भर दिती है, गर्मी तो निजात जो मिली है। ते मैं जी तुहाडे दोस्त लैके हाजिर हाँ तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है नैट वाणी, जिस विच असीं गलबात करते हाँ इंटरनैट दी वाणी की कहती है उस बारे। इस हफ्ते सोशल मीडिया यानी कि इंटरनैट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उत्ते की कुछ चल रहा है, की वायरल रही स्टोरियाँ, एक एक करके उन्होंने डिकोड करांगे। दोस्तों प्रोग्राम की तो शुरुआत हो चुकी है। मैं क्या जी गर्मियां दियां छुट्टियां आ गई हैं, छुट्टियां जिन्हों का इंतजार सानू पूरे साल रहिंदा है। मतलब मैं जो स्कूल सी ना छोटे होंदे तद मेरी तो एक महीने पहला ही लिस्ट बन जाती होंगी सी, तो मैं पूछना शुरू कर दिंदी सी मम्मी नू पापा नू कि छुट्टियां दे विच जाना कित्थे है, तो मैं अपनी लिस्ट दे विच जिहड़ियां प्लेसिस हुंदियां सी और नाम दे दिंदी सी, जिस विच सब तो पहले नंबर ते नानी दा घर ते उस तो बाद पहाड़ां दे नाम हुंदे सी। ते आई एम श्योर इन्हां छुट्टियां दे विच तुहाडे प्लान्स भी बन गए होणे, क्योंकि जून दा महीना आ जा रहा है, छुट्टियां वाला महीना। पर जेकर तुसी इन्हां छुट्टियां दे विच पहाड़ां ते जाण दा प्लान बनाया है अपने परिवार दे नाल, दोस्तां दे नाल, बच्चों के ना, तो मैं क्या जी रुक जाओ जरा। हाँ जी हाँ जी, तो हानू ही कह रही है रुक जाओ, कुदरत दे विच विचरना चंगा होंदा है सेहत वास्ते, पर सोचो जरा पहाड़ा ते जिते तुसी सुकून वास्ते जाते हो उत्थे तो हानू घंटे घंटे जड़ा है ट्रैफिक जैम विच रुकना पे, वो भी गर्मी दे इस वैदर दे विच, तो किहो जिहा लगेगा। मैं क्या जी छुट्टियां दा तो मजा उत्थे ही खराब हो जाना है, तो बस उदो भी दिमाग च ही रहना है कि चंगा हुंदा कि घर ही कोई एक्टिविटी कर लेंदे, कुछ खेड लेंदे या लोकल घूम लेंदे। जी हाँ, कुछ अजिहा ही होया सोशल मीडिया ते वीडियो दे राही जिहड़ियां बहुत सारिया पिक्चर्स जिहड़ियां है वो वायरल हो रही हैं, जिथे पहाड़ां दी राणी यानी शिमला विच 70,000 तो भी वध गड्डियां एंटर कर चुकियां ने, ते जिस करके हर थां हर गली जिथे ट्रैफिक जैम वेखन नूं मिल रहा है। किन्नौर बिलासपुर कुल्लू के रस्ते तो कई सैलानी पहाड़ी खेतर में पहुँच रहे हैं, तो यह सिर्फ शिमला की कहानी नहीं दस रही दोस्तों, जिन्हें भी इस टाइम हिल स्टेशन ने भारत के, मनाली की गल करिए मसूरी की या ऋषिकेश वर्गे अनगिनत हिल स्टेशन नॉर्थ इंडिया के, हर जगह यही हाल ने। तो दोस्तों जून महीने दियां इन्हां छुट्टियां दे विच थोड़ा जिहा इंतजार कर लो, इन्हां छुट्टियां का मतलब ही है कि कुछ खास मैमरीज़ बनानियां, वह मैमरीज़ तुसी ट्रैफिक जैम विच फसन की बजाय घर भी बैठ के बना सकते हो। हुण यही सोचो ना कि वह किवें, दसांगी दसांगी, पर पहला मैं कह सुनदी है गीत, गीत तो बाद छेती छेती आओ, क्योंकि मैं तुहानूं दसांगी कि जेकर पहाड़ां विच घूमन नहीं जाना तो फिर घर बैठे बैठे की कुछ खास वखरा कर सकते हो जो कि तुहानू पूरे पहाड़ा वाला सुकून देगा, वह भी घर बैठे बैठे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

कि तुसी भी कुछ समय तो गल्ला पुल रही हूं कि शरीर दे विच कमजोरी महसूस कर दे हूं ते नाल ही नाल किसी दी कई जरूरी गैर जरूरी हर एक गल पुल जांदे हूं ते फिर अगली नेटवानी दी खबर तो हाड़े वास्ते है। दोस्तों विटामिन B12 एक खोज के अनुसार पाया गया कि यह जो विटामिन है ये नॉर्मल होने के बाद भी शरीर के शरीर के सब तो उपरले ऑर्गन यानी कि ब्रेन विच डैमेज के सिंबल जड़े ने साइंस जड़े ने उसी देख सकते हैं। विटामिन B12 की दोस्तों गल करिए शरीर के दिमाग लिए बहुत जरूरी एक पोष

दोस्तों कुछ साल पहले ना समर वेकेशन ही सी जब असि कुमन गए, कुमन चंडीगढ़ ही गए सी, पर शौक सीगा कि ट्रेन दे विच जाना है। ते इस सफर दे दौरान रस्ते विच ही जिहड़ा मोबाइल फोन सीगा वह रह गया। बहुत लभन की कोशिश की पर फोन नहीं मिलिया, पर फोन तो नहीं मिलिया, पर उस तो बाद एक नवा फोन जरूर मिल गया। पर जो मोबाइल सीगा ना वो बहुत खास सीगा, कारण वो पहला फोन सीगा जो मैनू मिलिया सीगा स्कूल तो कॉलेज जाने वक्त। तो होंगे ना पहली पहली चीजा बेहद खास, पर उस समय तो मैं अपने फोन जो गुम होया उसकी कंप्लेन नहीं कर पाई, ना कंप्लेन की थी, ना फोन लभ्या। पर जेकर तुहाडा फोन कितने गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वैबसाइट मैं तुहाडे नाल सांझा करन जा रही हाँ, जिस ते तुसी जाके कंप्लेन जिहड़ी है अपनी दर्ज करा सकते हो। पोर्टल का नाम है दोस्तों CEIR, यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर रजिस्टर। करना की तुसी गूगल ते जाना है, गूगल ते सर्च करना है CEIR, पोर्टल ओपन हो जाएगा जिस ते तुसी अपनियां डिटेल्स फिल करनी है, मोबाइल दियां डिटेल्स फिल करनी है, ते उस तो बाद तुहाडे फोन दा जिहड़ा नेटवर्क है वो हर जगह तो जिहड़ा है उसनू ब्लॉक कर दिता जाएगा, ता जो फोन जेकर तुहाडा चोरी होए किसी नू मिलदा है वो ऑन करके सिम उहदे विच पाउण दी कोशिश करदा है ते उसकी लोकेशन पुलिस वल्लों ट्रेस जिहड़ी है वो इन्फॉर्मेशन दा कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि सारा डेटा सारा जिहड़ा उस विच तुहाडी इन्फॉर्मेशन सी वो मोबाइल ही जिहड़ा है ब्लॉक कर दिता जांदा है जब तुसी इस पोर्टल ते जाके रजिस्टर करवा देंदे हो। ते मैं कहा जी मेरा तो मोबाइल नहीं मिल पाया, पर उम्मीद करते हैं जेकर तुहाडा फोन वैसे तो गुमे ना, पर जेकर गुम गए चोरी हो गया तो इस वैबसाइट नू दोबारा दस रही हाँ CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर रजिस्टर, इस पोर्टल ते जाके शिकायत दर्ज करना बिल्कुल ना भुलना।

क्योंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा, पर थोड़े वास्ते एक बड़ा ही प्यारा मिठा जिहा गीत आ रहा है फिल्म प्रेम रतन धन पाओ तो मैं तुहानू मिलांगी ठीक 9:02 ते।

FM 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ मुहिम तहत खेतां किसानां अते पिंडां नूं जोड़ के एक व्यापक राष्ट्रीय मुहिम बनाई जानी चाहिए है। कर्नाटका विच डीके शिवकुमार नूं कांग्रेस विधायक दल दा नवा नेता चुनिया गया है। वह 3 जून नूं राज दे मुख्यमंत्री वजो सो चुकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी उत्ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। सरकार ने सोमवार तो 31 अक्टूबर तक कपाह दी दरामद उत्ते कस्टम ड्यूटी तो अस्थाई तौर उत्ते छूट दे दित्ती है। पंजाब मंत्री मंडल ने सरकारी विभागां विच ठेके उत्ते काम करन वाले 65,000 तो वध मुलाजमां नूं नियमित करन दा फैसला लिया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने अज अमृतसर दा दौरा किया अते सीनियर अधिकारियों नाल अमन कानून दी हालत दा जायजा लिया। दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने पाकिस्तानी ISI दे इशारे उत्ते काम करन वाले 8 मुलाजमां नूं गिरफ्तार किया है। जलंधर स्थित RTI कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह दी लाश अज दोपहर बाद फगवाड़ा दे चहेड़ू पिंड विखे एक निजी यूनिवर्सिटी नेड़े मिली है। पुलिस मामले दी जांच कर रही है। पंजाब सरकार वालों सूबे दे समूह सरकारी एडिड अते प्राइवेट स्कूलों विच 1 जून तो 30 जून तक छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया है। पंजाब अते हरियाणा दे बहुते हिस्सों विच अज सवेरे गर्ज चमक नाल मीह पैण कारण लोकां नूं गर्मी तो कुछ राहत मिली है। भारत दे 7 विकासी राज रंकी रेड्डी अते चिराग शेंटी दी पुरुष डबल्स जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दे फाइनल विच पहुंच गई है। एसन हुन तक दे FM न्यूज़ हेडलाइंस ते हुन तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल चाहता है।

कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा। प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे हो तुसी अपने दोस्त आश्रय नेहा रलहन नाल। फरमाइशा द प्रोग्राम जिस विच हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीत जुड़े है, सुने जाते हैं सुनाए जाते हैं तो हाड़ी फरमाइश ते। बस प्रोग्राम दे विच मैसेजेस एक एक करके मैं जी दोस्तां दे पहुंच रहे ने, जिस तो मैंने पता चल रहा है कि प्रोग्राम सुन रहे ने ते प्रोग्राम दा पूरा पूरा आनंद भी मान रहे हैं। पर इन्हां छुट्टियां दे विच की प्लान बनाया, तुसी कित्थे घूमन जा रहे हो, इस दा मैनूं हजे भी इंतजार है क्योंकि फरमाइशां दी पहुंच रही है मेरे तक। पर तुहाडे की स्पेशल प्लान्स ने, उसका इंतजार है मैनूं। तो दोस्तों वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा दा मैसेज आया है जी। तो इसके नाल ही नाल मजनू का टिल्ला तो कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर सतना मध्य प्रदेश तो उमंग मलिक आकांक्षा माही जी का मैसेज आया है। तो एक होर मैसेज आया जी पिंड हांडी खेड़ा जिला सिरसा तो राधे श्याम शर्मा इंदिरा शर्मा दा। ते लो जी फिर इना दोस्तां दी पसंद ते पेश है जी फिल्म कुदरत दा लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच एक गीत।

ड्रेकर दिल नहीं लग रहे, फटाफट अपना फोन चुको, नंबर है 9855-10-10-27 ते बस इस नंबर ते अपनी फरमाइश जड़ी है हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीत दी और साढ़े तक भेज दो। मैनू ये भी दसो कि दुनिया दे विच बहुत सारे लोगों नूं मिलदे आ, पर कुछ लोग जो सानू अपने पन दा एहसास दिंदे ने, जिन्हां नाल बहुत सारी गल्लां करन दा मन करदा है, पर फिर भी एक अजीब जी संग रोक लैंदी है गल दिल दी करन तों। पर ये सही है ये गलत है, क्योंकि दुनिया दे विच सब तो कीमती है अपने पन दा एहसास। हर कोई तुहानू महसूस नहीं करवा सकता, ते जेकर तुहाडे नाल भी अजिहा हुंदा है

0: हाँ जी, प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे हो तो सही बने हैं अपने दोस्त आरजे निहार अलहनिनाल। मैं कह जी, एक लंबे जे दिन तो बाद दिल की चाहता है, दिल चाहता है कि बस कोई शख्स हो ही जो सारे दिन दी चुपचाप साड़ी गल सुन ले, पहला गल सुन ले उस तो बाद सानू समझाए कित्थे असी गलत सी ये जिथे सी सही सी उस गल दी हौसला अफजाई करे। मैं तो यही लगता है, पर तुहाडा की विचार है? एक लंबे जे दिन तो बाद इंसानू की चाहिदा होंदा है? प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच अगले मैसेजेस वाल चा मारिए। तो श्रोता रघुवीर नगर तो मैसेज आया जी दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब ते लड्डू दा। इस दे नाल ही AIR पंजाबी आपकी पेशकारी दा नहीं कोई जवाब। प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच किसी भी गीत की फरमाइश भेजी है ते मैसेज आया जी पिंड तेजा मोहड़ी अंबाले तो बंशी लाल संधु मोहन प्यारे बूटा मंडी जलंधर तो मैसेज कर रहे ने। बहुत शुक्रिया इन्होंने दोस्तों का। तो इन्हों के नाल ही नाल गाँव चोहलदा बागपत तो संजय डिंगिया नमन डिंगिया का भी मैसेज पहुँच गया। सैक्टर 67 तो मोहाली चंडीगढ़ TD मल्होत्रा, रीति मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज भी प्रोग्राम च शिरकत कर चुके ने। वैके जी बड़ी दूरों मैसेज आया अगला, हिंगोली महाराष्ट्र तो शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े जी का मैसेज। इन्हां दे नाल होर साथी जिहड़े जुड़े ने, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोच छत्तीसगढ़ तो, देव शंकर तमूरिया, अजय देव, तुषार देव, डोली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका ते प्रभा देवी दे नाल नाल मास्टर अल कबीर। गोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान चिंपा, पूजा परिहर प्रोग्राम सुन रहे ने। ते पवन लिंबा अमरपुरा फाजिलका तो मैसेज कर रहे ने। ते एक होर मैसेज साढ़े तक पहुंच गया है जी करनाल तो, विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वानी जयजान का मैसेज आया जी। किसी भी गीत विच फरमाइश आई है कि शामिल कर लिता जाए। ते संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो मैसेज भेज रहे हैं। तो लो जी फिर इन्हां सारे ही दोस्तों की रली मिली पसंद ते सुनते हैं एक प्यारा जिहा गीत जिसनों आवाज़ भी प्यारी जी सिंगर ने दी है अलका याग्निक ते उन्हां दा साथ दिता है देवा शीश ने।
1: कसम प्यार की होती है, जान का क्या गम, जान से बढ़कर

बिल्कुल जी, लव यू तो है सारे ही स्रोतियां दे नाल, दिलो लव यू है, लव यू है अपना कीमती समा साढ़े नाल सांझा करन वास्ते, लव यू है अपनी फरमाइश साढ़े तक पहुंचाने वास्ते, इंतजार करन वास्ते कि कदों तुहाडी वारी आएगी, कदों तुहाडी फरमाइश पूरी की जाएगी। प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच अगला मैसेज आया है जी। किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूर थला तो मैसेज कर रहे ने, फरमाइश है जी इन्हां दी सतिंदर सरताज ते जैस्मिन सैंडल्स दी आवाज दे विच गीत जाइए सजना। मैं कह जी मैसेज करने वास्ते बहुत शुक्रिया, पर पंजाबी ते हिंदी गीतां दा ये प्रोग्राम है, गीत असीं जरूर सुनांगे तुहाडी पसंद दा पर किसी होर प्रोग्राम दे विच। इस नाल ही अबोहर तो मैसेज कर रहे ने राम साहेब शर्मा, होली चौक उत्तम नगर तो जयराम खोरवाल, सचिन अमन दीपांशु लिखते ने, आपां पहला भी मैसेज किया सी, किसी ने देखा नहीं, इस प्रोग्राम का सवेर तो इंतजार सी, लो जी तुहाड़े इंतजार की कड़ी जिहड़ी है मुकम्मल हो गई है, तुहाड़ा मैसेज साढ़े तक पहुँच गया, बहुत बहुत शुक्रिया है जी। इस दे नाल ही नाल पुशन खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालनी टिवानछी खेड़ा मैसेज कर रहे हैं, तो एक होर मैसेज बोधराज खोरवाल, कमला रानी, बानु प्रकाश ते गीतिका खोरवाल का आया जी। इन्हां दे नाल ही गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली तो भेज रहे हैं, तिनारकली बाजार जगराऊं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर गुरमन, सरबजीत कौर सिंह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो, दर्शपाल सिंह वैंकूवर कनाडा तो, रोबिन सिंह मैसेज भेज रहे ने, ते एक होर नमस्ते आई है जी सानू रविंद्र जी दी जलंधर तो, इन्होंने मैसेज किया है जी, ते इन्हां दे नाल ही करणवीर हाउस तो, गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचिया बठिंडा तो, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत प्रोग्राम सुन रहे हैं ते पसंद भी आ रहे हैं उन्होंने। नौहर राजस्थान तो नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु, पवन, ते इन्हां दे नाल ही नाल बहादुरगढ़ तो अग्रवाल परिवार, महेश ते मीना जी मैसेज कर रहे हैं, गांव को

चौटाला हरियाणा तो संजय शर्मा प्रियंका शर्मा मैसेज कर रहे ने ते लो जी फिर इन्हां दोस्तां दी रली मिली पसंद ते ही सुनदे हां एक गीत ते गीत दे बोल तुहाडे रेडियो सेट्स ते पेश है आवाज लता ते मन्ना दे।

नमस्कार आदाब जी आया नू FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन कीता तुसी ते बने होए हो अपनी दोस्त आरजे नेहा रल दे नाल। गजला दी ए महफिल जिस विच जिक्र हुंदा है प्यार मोहब्बत दे नाल जुड़े हुए तमाम जज्बातां दा एहसासां दा। जिंदगी दे विच बचपन तो लैके आखरी साह तक अनगिनत लोग ने जिन्हां नूं मिलदे हां, पर उन्हां सारे ही चेहरियां दा साडी जिंदगी दे विच एक अलग मुकाम हुंदा है, एक वखरा। तिन्हां सारे लखां चेहरियां दे विचों कोई एक अजिहा दिल हुंदा है जिस दी धड़कन सुन लगदा है कि ये दिल तुहाडे वास्ते बनिया है, ये शख्स तुहाडे वास्ते बनिया है, ते उस शख्स तुहानू मिले ना मिले पर उसकी हर एक छोटी आदत जहन दे विच इंज बैठ जाती है। तुसी उसनू इंज महसूस करते हो कि वक्त बीतन दे नाल वो महबूब उन शख्स तुहाडी शख्सियत दे विच ही उतर आंदा है। फिर फर्क नहीं पैंदा वो इंसान जिंदगी दे विच मिलिया या नहीं मिलिया, वो मिलके तुहाडे अंदर प्यार दा बी पहला ही बीज गया। बशीर बद्र साहब इस एहसास ते लिखदे ने, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। प्रोग्राम शामे गजल दी पहली गजल तुहाडे पेशे खिदमत करन जा रही हां, उम्मीद है तुसी गौर फरमाओगे ते आनंद लवोगे। आवाज गुलाम अली दी।

उनसे कुछ इस तरह प्यार आने लगा कि अपने हर एक चीज से मोहब्बत होने लगी। प्रोग्राम शामे गजल सुन रहे तुसी अपने दोस्त आरजे नेहा रंधना। किंतु जद उस खास शख्स नू गल कर दिया आम तो कोई खास हो जाता है जिस दी हर एक छोटी छोटी चीज तुहाडे अंदर समा जाती है ते तुसी अपने हर एक काम विच अपनी हर एक गल दे विच उस नू वेख्या जा सकता है, उस नू महसूस किया जा सकता है। तो प्यार दी सब तो उच्चा मुकाम होता है। तो जब किसी दे नाल अजिही मुहब्बत होती है तो कहिंदे रब भी उसका बहुत इम्तिहान लैंदा है, गल गल ते परखदा है कि हाँ ए हकीकी है या मिजाजी है मोहब्बत। इसते ही मिर्जा गालिब लिखदे ने, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने ना।

देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। प्रोग्राम शाम गजल सुन रहे हो। जद उस दे रंग विच रंग गए, जद उस विच इंसान दी जगह खुद रब दिखन लगे, ते समझो मुहब्बत हकीकी है। इस ते बशीर बद्र साहब अगे लिखते ने, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जबा सब समझते हैं जज्बात की। मुकद्दर मेरी चश्मे पूर आपका, बरसती हुई रात बरसात की। प्रोग्राम शामे गजल दे विच अगली गजल जो पेश करन जा रहे हैं चंदन दास की आवाज़ दे विच, तुहाडे पेशे खिदमत।

दोस्तों प्रोग्राम शामे गजल दे विच महज कुछ लम्हे कुछ कड़ियां बाकी है तुहाडे नाल। गल कीती कि रूह विच जद प्यार उतर जाए ते महबूब खुदा बन जाए इस तो वड्डी दुनिया दे विच कोई नेमत नहीं ते जिसनू उसका रब उसका खुदा महबूब विच मिल भी जाए तो समझो उस दी कायनात दी सच विच बख्शिश है बहुत। जॉन एलिया लिखते ने अभी फरमान आया है वहां से, अभी फरमान आया है वहां से कि हट जाऊं मैं अपने दरमियां से, यहां जो है तनफुज ही में गुम है, परिंदे उड़ रहे हैं शाख ही जा से, दरीचा बाज है यादों का और मैं हवा सुनता हूं पेड़ों की जबां से। प्रोग्राम शामे गजल दे विच जुड़े हुए अपने दोस्त आरजे निहार लहन दे नाल। जिंदगी विच प्यार मोहब्बत इश्क ते कोई हथ वस नहीं हुंदे तिन्नो चीज़ां, पर कोशिश करना कि जद वी हो जान तद हकीकी ही रखना, मिजाजी ना बनना। प्रोग्राम की अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज विच पेश करन जा रही हूँ, तेज़ी नाल ही मैनू यानी कि अपने दोस्त निहर नूं दिओ इजाजत। मिला कि तुहानू अगले प्रोग्राम अगले सफर विच जिसका नाम है एक प्यार का नगमा है।

नमस्कार, हेलो जी, आई नो, वेलकम प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है देविच। अपमान 102.7 मेगाहर्ट्स दे आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल तुसी ट्यून इन कीता होया अपने दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। सारे ही दोस्तों नू चहते मिठी जी मुस्कान, दिल विच जोश प्यार दुमिहा जोड़, सारे ही दोस्तों का इस्तकबाल करते हाँ इस खास महफिल जिसका नाम है शाम एक प्यार का नगमा है, क्योंकि रात दी पहर है जिस विच हिंदी गीतां दी जिहड़ी है लड़ी चलती है, गीतां दी लड़ी चलती है, ते नाल ही कुछ जज्बात कुछ गल्लां भी चलदियां ने। तो उम्मीद करते हाँ अज के इस खास प्रोग्राम के गीतों की इस खास महफिल के पूरा आनंद माणोगे, पूरा साथ दोगे। इससे ही मुहब्बत से ही किसी शायर ने लिखा है, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझाओगी दीवाना, तुम समझोगी दीवाना, मैं भी इकरार करूं, मैं भी इकरार करूं। प्रोग्राम का पहला गीत तुहाड़े वास्ते प्ले करन जा रही हूं, उम्मीद करती हाँ पसंद आएगा।

कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है।

तुम्हारी आंखों की झील में, तुम्हारी आंखों की झील में डूब जाना अच्छा लगता है। तुम्हारी बातों में अपना हर गम भूल जाना अच्छा लगता है।

लबों पर नाम तेरा और आंखों में तस्वीर है, तुझसे ही जुड़ी मेरी हर एक तकदीर है। माना कि दूरियां हैं दरमियां हमारी, पर इन दूरियों में भी तू ही मेरी जागीर है।

मोहब्बत, मोहब्बत तो बस एक इबादत है जिसमें रूह से रूह की चाहत है। तुम्हें पा लेना ही मोहब्बत नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी राहत है, यही मेरी मोहब्बत है, यही मेरी मोहब्बत है।

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे हो तुसी अपने दोस्त आरजे निहाल हिंदीना। प्रोग्राम दे विच गीत सुने, कुछ गीत दे रहे गल्ला बातां भी हुई है। ते हुन वारी आ चुकी है इस महफिल नू, इस प्रोग्राम नू एक खूबसूरत अंजाम दे के तुहाडे तो इजाजत लैण दा। बशीर बद्र साहब दियां कुछ चंद शेर है, लिखदे ने साथ चलते जा रहे हैं, साथ चलते जा रहे हैं, पास आ सकते नहीं, एक नदी के दो किनारों को मिला सकते नहीं। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, उम्मीद कर दिया आज तो तुहानू पसंद आया होगा, बहुत सारे गीत सुने। तो इस दे नाल ही प्रोग्राम का आखिरी गीत हुन पेश करन जा रही हाँ तुहाडे सारे वास्ते। तो इस दे नाल ही मैनू यानी कि अपने दोस्त नू दियो इजाजत, मिलेंगे तुहानू इस जिंदगी दे सफर दे विच फिर कदे किसे शाम किसे खास प्रोग्राम लैके।

एफएमएंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। रात दे 11 बज रहे ने ते साडी अज दी सभा दे सारे ही प्रोग्राम इत्थे समाप्त हुंदे ने। हुण तुहानू मिलांगे कल जद कड़ी दियां सुईयां इशारा करनगियां सवेर दे 5:53।